धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

0: gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क।

0: सही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दोस्तों, चोट और समय दोनों बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, पर दोनों में फर्क बस इतना सा होता है कि चोट दर्द देती है और समय उस दर्द को समझना सिखा देता है। इसलिए हर बुरे वक्त से कभी घबराइएगा मत, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है हम सभी की जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। जी दोस्तों, आज 28 मई 2026 का दिन, और चुनावी माहौल की हम बात करें तो आज का दिन जो है वो दूसरा चरण पंचायती राज की हम बात करें, पंचायती चुनाव की हम बात करें तो आज जो है वो दूसरा चरण है। तो आज जिनकी वोटिंग है, आज उनकी धड़कनें तेज हो गई होंगी। तो उसी तरह से जैसे जैसे चुनावी शोर थमता जा रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं मौसम का जो है हाल भी, मिजाज भी थोड़ा सा हल्का, यानी कि थोड़ा सा मतलब गर्मी से राहत देने की ओर झुक रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि धर्मशाला में जो बात करें तो सुबह, आज की सुबह की शुरुआत घने घने से काले काले से बादलों के साथ हुई है, और बादल छाए हुए हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। आसार पूरे हैं लेकिन क्या पता, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ढेर सारा मनोरंजन, ढेर सारी जानकारियां आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, और जानकारियां जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और खास करके अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन के इस प्यारे इस गीत के साथ। एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है मनोरंजन की, और अब जो है स्टेप बाय स्टेप ढेर सारा मनोरंजन आप सभी तक पहुंचने वाला है, ढेर सारी बातें आप सभी तक पहुंचने वाली हैं, ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचने वाली है। जी दोस्तों, तो बात करें मौसम की, तो इस समय जो है बहुत ही, मैंने पहले भी कहा कि काले काले से बादल जो है वो छाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं किसानों को फिर से ये उम्मीद रहेगी कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो थोड़ा सा हम खेतों का काम जो है वो फिर से कर सके, क्योंकि अब ज़मीन को ज़रूरत है पानी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है फेस की है। कुछ पिछले इन दो तीन या हफ्ते की बात करें, हफ्ता डेढ़ हफ्ता या एक मंथ ही मान के चलिए कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी का सामना जो है हमें करना पड़ा है।

जी दोस्तों, मौसम विभाग ने अब राहत के संकेत जो हैं वो दिए हैं। 28 से 30 मई के बीच प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 28 मई के लिए ऊना, बिलासपुर और सोलन में लू के साथ आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कहीं कहीं ओलावृष्टि व 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। जी दोस्तों, तो इसी तरह से मौसम का रुख है और आंखों देखा हाल अगर हम देखें तो सचमुच ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं कब जैसे बारिश की फुहारे पड़नी शुरू हो जाए। तो बिल्कुल एक तरफ चुनावी माहौल गरमाया है और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज गरमाया है, लेकिन धीरे धीरे चुनावी माहौल भी ठंडा हो रहा है और उसी तरह से मौसम का मिजाज भी शायद ठंडा हो जाए, लेकिन सतर्कता और सावधानी हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, मौसम की अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों ताल मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली रूटीन के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, नए जुनून के साथ, नए उत्साह के साथ। क्योंकि हर पल अगर हम नई शुरुआत करते हैं दोस्तों तो जिंदगी का एक नया रुख ही हमारे सामने आता है और शायद जो भी दुख परेशानियां हम फेस कर रहे होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों जीवन में जब आप हारते हो तो फिर आप शून्य से शुरुआत नहीं करते, अनुभव से शुरुआत करते हो। अतः ये समझ लीजिए कि जब तक आप संपूर्ण रूप से हार नहीं मान लेते तब तक हर हार आपकी आने वाली जीत का जरूरी हिस्सा होता है, जिंदगी का पार्ट होता है जी दोस्तों। तो कभी भी जिंदगी में हार मानना तो हमारे जीवन का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, बस पर उस तरह से, यानी कि अभी आप थोड़ा सा इसको गलत वे में मत लेकर जाना दोस्तों, क्योंकि आज का जो दिन है वो भी खास है, चुनावी माहौल है। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि हार मानना तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर हम हार कैसे मान सकते हैं। लेकिन ये मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में जो है ना ये उतार चढ़ाव एक पहलू है, एक सीढ़ी है हमारे लिए जो कदम कदम पर हमारे सामने आते जाते हैं, लेकिन ये हमें सबक सिखाने के लिए, हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए होते हैं, ना कि किसी के साथ भेदभाव करने के लिए या बैर रखने के लिए या लड़ाई झगड़े करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लड़ाई झगड़े करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज पे सवाल उठाने का मौका देते हैं दूसरे लोगों को। जिस दुनिया की हम बात करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, तो मौका तो हम खुद दे रहे हैं दुनिया को कहने का। दुनिया का काम है कहना, लेकिन आपका काम है सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने जुनून के साथ, अपनी लगन के साथ बस आगे की ओर बढ़ते रहना। फिलहाल दोस्तों कार्यक्रम में समय है आगे बढ़ने का ही, और आप सभी जानते हैं 9:20 हो चुके हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां भी जानना बेहद जरूरी है, वो भी हमारी जिंदगी का पार्ट है। तो आइए जानते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी जुड़ेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त रोचिका के साथ 91.2 MHz पर।
1: 32 मामलों में 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योत सिद्ध में नई फसल का रोग चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख, रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 2,276 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के आज कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से है, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में है। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। आज देश सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद उल अजहा पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों में और ईदगाहों में विशेष नमाज अता की जा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मंगल कामना करते हुए कहा है कि ये त्यौहार समाज को सद्भाव, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें करीब 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी जिले में देखा गया है, जहां 85 मामले सामने आए हैं।
2: पूरे स्टेट में 232 केसेस हमारे पिछले रिपोर्ट में छोटे बड़े मिला, तो लगभग 2900 हेक्टेयर छोटा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और जो उसमें टोटल जो हमने नुकसान आज तक कभी असेस किया वो 67 लाख रुपीज का है। इंसिडेंट्स की बात है तो सबसे आगे इस समय मंडी में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, 85 केसेज वहाँ के हैं। तो इस समय भी हमने करीब 2000 बीच में अपने लोग डिप्लॉय कर रखे हैं, हमारे करीब 10 से 12 ड्रोन्स हैं, उनमें भी हम मदद दे रहे हैं, तो हम ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, तो ड्रोन से भी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट हमारे लिए अब थोड़ा आसान रहेगा। फायर लाइन्स होती है हमारी, वो भी हमने काफ़ी अपनी मेंटेन की, तो 3000 किलोमीटर की जो फॉरेस्ट फायर लाइन्स हैं उसको हमने मेंटेन किया, जो डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्रिपेयर है, और हम आगे आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा।
1: जनगणना प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DGH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोग चढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश सहित पंजाब और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि नई फसल बाबा को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
3: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में गत रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पंजाब हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने नई फसल का रोग चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रखे। कई श्रद्धालु परिवार सहित शाह तलाई से पैदल यात्रा कर देवसिद्ध पहुंचे। मान्यता है कि नई फसल बाबा को चढ़ाने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा। दिन भर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का माहौल बना रहा और श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर द नेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण के तहत ऊना जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राधिकरण के सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अदालतों में चल रहे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश इस अभियान में की जा रही है, जिससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, संपत्ति विभाजन, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता मामलों जैसे सुलह योग्य विवादों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश से मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। गर्मियों में पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही शिमला में पर्यटन कारोबारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि रोजाना 20,000 से अधिक वाहन पहुंचने से शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 32 ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नगर निकाय के नव निर्वाचित पार्षदों की 8 जून से पहले होगी शपथ। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रदेश में 1279 पंचायतों के दूसरे चरण का मतदान आज, 11,000 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। पंजाब केसरी की खबर है, दूसरे चरण में आज हिमाचल की 1279 ग्राम पंचायतों में वोटिंग। नेरवा में छात्रों के तीखे सवाल, मुख्यमंत्री सुखू के बेबाक जवाब, दिव्य हिमाचल की एक खबर है। इसी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, छात्रों ने सीएम से पूछा एमएलए के लिए परीक्षा क्यों नहीं। पत्र को अन्य खबर है, गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त, उपायुक्त को चेतावनी, दूसरे चरण में ना दोहराई जाए गलतियां। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, आज और कल बारिश, ओलावृष्टि की संभावना, प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी, 1276 पंचायतों में हो रहा चुनाव। तापमान बढ़ने से प्रदेश के जंगलों में बड़ी आग की घटनाएं, अब तक जंगलों में आग के 232 मामलों में 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर ज्योत सिद्ध में नई फसल का रोग चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख, रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली रूटीन के साथ, दिन की शुरुआत के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि नजर और नजरिया दोनों का अपना अलग ही महत्व होता है। नजर वही देखती है जो आंखों के सामने दिखाई देता है, लेकिन नजरिया वो महसूस कर लेता है जो शब्दों में कभी कहा ही नहीं जाता। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे देखने वालों का नजरिया छोटा होता है। नजर कपड़े, चेहरा और हैसियत देखती है, जबकि नजरिया इंसान की नीयत, संघर्ष और दिल को समझता है। दोस्तों, नजर बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं और नजरिया बदलते ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान वही है जो दूसरों की कमियों में भी इंसानियत देख ले। इसलिए कोशिश हमेशा सिर्फ अच्छी नजर रखने की नहीं, बल्कि खूबसूरत नजरिया रखने की होनी चाहिए। क्योंकि नजर तो हर किसी के पास होती है, पर अच्छा नजरिया बहुत कम लोगों के पास होता है। है ना, कितनी सच्ची सी बात है।

के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने प्यारे से इस कार्यक्रम में रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है। पहले चरण की शानदार सफलता और भारी उत्साह के बाद प्रशासन ने 28 मई यानी कि आज के दिन दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी जो है पूरी तरह से तैयारियां बहुत समय पहले यानी कि पिछले कल की हम बात करें तो 27 को पूरी तरह से वो कमर कस कर, क्योंकि ये जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं ना दोस्तों, तो ये थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि घबराहट भरे होते हैं और इनमें थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़ों का ज़्यादा जो है हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्यों हम ये चीज़ें करते हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हार जीत तो अगर आप इस मैदान में उतरे हैं तो अगर आप जीतने की चाह रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिम्मत आपको हार की भी रखनी होगी। तो लड़ाई झगड़े करके और लड़ाई झगड़े वो नहीं करते हैं जो कि इस चुनावी मैदान में उतरे होते हैं, बल्कि जो उनके साथ लोग होते हैं। युवाओं की हम बात करें तो युवाओं का पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हाइपर हो जाना या तो लोगों के साथ मतभेद करना और उसी वजह से कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना। हम जिस बात को आराम से बैठ के सुलझा सकते हैं उसे हम एक ऐसा रूप दे देते हैं कि उसे सुलझाना तो छोड़िए लेकिन बाद में उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी, मैंने पहले भी कहा कि अपनी ही इमेज पे हम सवाल खड़े कर लेते हैं, अपने ही व्यवहार को हम सबके सामने बुरा बना लेते हैं। तो दोस्तों ये तो कहते हैं ना कि एक दिन का रिजल्ट है और 5 सालों के लिए, 5 साल के बाद फिर से कोई नया उम्मीदवार इस मैदान में उतरेगा, लेकिन हम इस छोटी सी बात के लिए पता नहीं किस और कहां कहां तक चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का सवाल होता है। ईमानदारी अगर किसी में है और वो अच्छा व्यवहार है तो वो ज़रूर लोगों के विश्वास पे खरा उतरेंगे और वो इस मैदान में जीतेंगे। लेकिन कई बार झूठ फरेब करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ही मुश्किलें क्रिएट करती हैं बातें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और शांतिपूर्वक जो है वोटिंग में हिस्सा लीजिए, क्योंकि वोट करना हमारा अधिकार है, इससे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे आप कहीं भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना वोट जो है वो ज़रूर डालें, क्योंकि वोट की अहमियत, एक वोट की अहमियत बहुत है। और इन रिजल्ट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा ही हो रहा है, कहीं एक वोट से जीत तो कहीं एक वोट से हार, बस इसी तरह से जो है वो सिलसिला चला हुआ। तो सोचिए एक वोट की कीमत कितनी है, लेकिन हमारे लिए भी है, उनके लिए तो है ही लेकिन हमारी अपने अधिकार के लिए भी है। तो बिल्कुल दोस्तों ज़रूर वोट कीजिए और सही प्रतिनिधि को चुनकर अपने समाज सेवा में लगाइए। जो इंसान आपको वाकई में लगता है कि वो काम कर सकते हैं, हमारे समाज को प्रगति की ओर लेकर जा सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर मौका दीजिए। तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। और याराना जहां हो सचमुच जिंदगी में ना एक सहारा सा मिल जाता है, लेकिन अगर याराना सही हो तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जिंदगी में ऐसी राह में भटक जाते हैं कि हर किसी को अपना दोस्त मानने लग जाते हैं, अपना करीबी मानने लग जाते हैं, लेकिन वो हमें कब किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दें, कब हमारे उस विश्वास को, हमारे उस अपनेपन को जो है दुश्मनी में बदल दें, पता नहीं चलता। और अक्सर लोग जो है वो कहते हैं ना कि जब भी किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपना बनाकर ही करते हैं। पहले तो मीठी मीठी सी बातों में बहला फुसला लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो उस विश्वास को तोड़ भी देते हैं। तो ऐसे में हमें आज के समय की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ही सावधानी के साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, कुछ आदतों की बात करें, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसका खेल पूरी ज़िंदगी में जो है एक चक्रव्यूह की तरह चलता रहता है। सिर्फ एक छोटी सी आदत से बदल सकती है हमारी पूरी ज़िंदगी, और वो आदत शुरू होती है हर सुबह। तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल करना होगा, जब आपको समझ में आएगा, बातों को सुनेंगे समझेंगे तो ऑब्वियसली यकीन करेंगे। दोस्तों, सच तो ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग रात में नहीं बल्कि सुबह जीतते हैं। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तो वो अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं, और यहीं से बनता है फर्क एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हर सुबह पर्पस के साथ शुरू हो, अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन आपको मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और अनस्टेपेबल बना दे, तो आपकी पूरी जिंदगी किस लेवल पर पहुंच सकती है। जी दोस्तों, तो यही कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं। ज़रूर बात करेंगे, ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी छोटी छोटी सी आदतें हैं जिसकी वजह से हम सफल हो सकते हैं सिर्फ आदत बदलने से। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे अपनी इस बातचीत पे, अपनी इस खास जानकारियों भरी बातचीत पे।

दोस्तों, अब के बरस मूवी का ये प्यारा सा गीत सोनू निगम की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं जी दोस्तों। तो जहां जहां भी वोटिंग हो रही है, कैसा है वहां का माहौल? गर्माया है या फिर बस वो धड़कने तेजी से बढ़ती जा रही है कि क्या होगा शाम के समय और क्या नहीं होगा? बिल्कुल दोस्तों, तो ये धड़कने तो जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता है बस इसी तरह से चलती रहेंगी। बस दिल थाम कर बैठ जाइए और आराम कीजिए, रेस्ट फरमाइए, क्योंकि लोगों के चेहरों पे क्या है और दिलो दिमाग में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो सोचा होता है कई बार उससे उल्टा ही हो जाता है। तो यही बातें हैं हम सभी लोगों की, क्योंकि कहते हैं ना कि सभी को बता कर जो है हर चीज़ नहीं की जाती, उसी तरह से ये वोटिंग का थोड़ा सा सस्पेंस होता है कि कहने को तो कह देते हैं कि नहीं ये वो सो, लेकिन लास्ट में जब देखने को मिलता है तो सारी बाजी पलटी हुई लगती है। खैर, आपके वहाँ की किस तरह से बाजी पलटती है या फिर आपके हाथों में रहती है ये तो आप ही जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे जब रिजल्ट आपके सामने आएगा जी दोस्तों। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: के साथ यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, जिद जब दिल पर सवार हो जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। अपनी बात मनवाने की चाह में वो अपनों के दिलों तक को तोड़ देता है। हर रिश्ता थोड़ा झुकने से चलता है, हर बात लड़ने से नहीं सुलझती। कभी खामोशी जीत जाती है तो कभी प्यार से बड़ी कोई दलील नहीं होती। वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि जिन रिश्तों को हम जिद में हार गए, असल में वही हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी।

तो बहुत ही ये प्यारा सा गीत आप सभी ने इंजॉय किया, और सचमुच रुलाने तो हर कोई आ जाता है, लेकिन हंसाने बहुत कम लोग आते हैं इस दुनिया में, हमारी जिंदगी में, क्योंकि बुराई की कमी नहीं होती है, अच्छाई की कमी होती है। अच्छाई के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो 100 जो है चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, 100 बीमारियां हमारे सामने आती हैं ऐसी जिन्हें फेस करना मुश्किल हो जाता है, और उन्हें फेस करते करते कई बार हमारी जो हिम्मत जो शुरुआती दौर में एक जुनून के साथ बनी होती है वो लोगों के आगे टूट जाती है और हम बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है, बस उस हिम्मत को बनाए रखना है। फिलहाल आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की और। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों के लिए इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी। इस योजना के तहत चिकित्सकों को 20% इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इस योजना में चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पद और पैरामेडिकल स्टाफ के 120 पद भी भरेंगे बहुत जल्द। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए थी और आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों 91.1 ऑफ द ओमेगा हर्ट्ज़ से आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जो कि हम सुबह की हैबिट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि सुबह से ही शुरुआत होती है पूरे दिन की, और कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो जब हम सुबह ही लेजीपन से उठेंगे या आलस में उठेंगे तो पूरा दिन आलस में जाएगा, तो फिर हमारी जो एनर्जी है ना वो डाउन सी ही रहती है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने किया ही क्या, चाहे आप कितना भी काम कर लें, या तो काम करने का मन नहीं करेगा, और किया ही किया तो शायद उसे काम को मन लगा कर नहीं किया। फर्क बहुत होता है, लेकिन जो एक कहते हैं कि जरूरी बातें हैं उन्हें जान दें। इमेजिन कीजिए कि एक सुबह के एक दिन की बात है, यानी कि सुबह के 5 बजे हैं, बाहर हल्की सी ठंड है, चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ है, और उसी सन्नाटे में दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो जो अभी भी नींद में डूबे हुए हैं, और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी को शेप दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने स्नूज दबाया और दूसरे ने खुद को जगाया, और यही छोटा सा डिसीजन धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका दिन 9 बजे ऑफिस शुरू होने से पहले ही तय हो चुका होता है। उस पहले घंटे में जब आपका माइंड फ्रेश होता है, जब डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, जब दुनिया अभी भी धीमी चल रही होती है, वहीं पर आप या तो खुद को जीतते हो या फिर अपनी ही कमजोरियों के सामने हार जाते हैं। और यही वो मोमेंट है जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स सबसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं जी दोस्तों। तो और भी हम बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों अनोखा अंदाज मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत कुमार सानू अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और जानते हैं एक और खास जानकारी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली मैट्रिक यानी कि 10वीं और जमा 2 की सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट और अंक सुधार परीक्षाओं के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया पात्रता श्रेणियां और शुल्क ढांचा जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी और अभ्यर्थियों को अपने संबंधित स्कूलों या संस्थानों के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। बोर्ड ने साफ किया है कि इस परीक्षा में किसी भी नए छात्र को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 1 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि ₹1000 लेट फीस के साथ 5 जून 2026 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मैट्रिक स्तर पर छात्रों को 2 विशेष सुधार श्रेणियां दी गई हैं। एसेंशियल इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के तहत वे विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने 5 अनिवार्य विषयों में से कम 3 विषयों में सफलता हासिल की है। जी दोस्तों, और ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट कैटेगरी उन छात्रों के लिए रहेगी जो सभी अनिवार्य विषयों में पास हैं लेकिन अपने मार्क्स सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा कंपार्टमेंट श्रेणी में आने वाले छात्र वर्तमान बोर्ड नियमों के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

तो इसी के साथ अब समय है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूल आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने इस समय ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी आदतें जो कि हमारी सुबह के साथ हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं।

दोस्तों, जो लोग सुबह को कंट्रोल कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सिर्फ एक टाइम नहीं है हमारी ज़िंदगी का, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहाँ आपका डिसिप्लिन, आपकी इच्छा शक्ति और आपका फ्यूचर तीनों एक साथ टेस्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सुबह बिना किसी प्लान के शुरू होती है, फोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, रैंडम थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत की, तो आपका ब्रेन पहले ही रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप दिन को कंट्रोल नहीं करते, दिन आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप उसी सुबह को पर्पस के साथ शुरू करते हैं, कुछ मिनट्स खुद के लिए निकालते हैं, अपने गोल्स विजुअलाइज करते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, तो आपका माइंड एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगता है। यही रीज़न है कि टीम कुक जैसे लीडर सुबह जो है वो 43 बजे उठते हैं। चार इलॉन मस्क जैसे लोग अपने दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सुबह के टाइम पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो गोल्डन विंडो है जहाँ क्लैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर ये इतना पावरफुल है तो हर कोई इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाता? जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सुबह उठना सभी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, तो क्या चाहिए? और अगर अपनी ज़िंदगी को सफलता की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो सुबह की ये हैबिट, यानी कि उठने की हैबिट, हमारे लिए बहुत पावरफुल है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

तो 91.5 द ओमेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, और इस बार के चुनावी माहौल की बात करें तो सचमुच पंचायती राज की हम बात करें, जो पंचायती चुनाव इस समय चल रहे हैं, दूसरा चरण जो है आज 28 मई को है और तीसरा जो है वो 30 मई को होने को है। तो बिल्कुल, और इस बार का इतिहास कुछ अलग ही गवाह है दोस्तों। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि एक नई पहचान या यूं कहें कि एक नई छाप जो है वो समाज में उभर कर सामने आई है। नगरोटा बगवा की हम बात करें तो लगभग 97 साल के एक बुजुर्ग प्रत्याशी जो कि प्रधान पद में जीते हैं, तो है ना, ये काबिले एक कहते हैं दोस्तों पहचान बनाने वाली बात। और एक तरफ हम बात करें सुलह की, तो 22 वर्ष की लड़की ने प्रधान पद पे जीत हासिल की है। तो सचमुच ये एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। और कहते हैं जब युवाओं के हाथ में भी समाज की डोर जाएगी तो उन्हें भी समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है, और उन्हें नॉलेज भी है हर एक बात को संभालने का। तो हर किसी को मौका देना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे लिए, हमारे समाज के विकास के लिए कौन सा पर्सन जो है वो सही है और सही नहीं है। ये एक कहते हैं ना दोस्तों, बहुत जंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती है ये, तो सच में काबिले तारीफ कह सकते हैं और गर्व महसूस करने वाली बात कह सकते हैं। तो है ना, ये इतिहास में रचने वाली बात। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि अभी जानकारियां भी आप सभी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रोचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो साथ ही बातों के साथ साथ कुछ जानकारियां, क्योंकि दोस्तों अगर समाज में रहना है, अपने शहर अपने समाज को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसे क्यों हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए इससे जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूं। दोस्तों, गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों देश के मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंच रहे हैं। खासकर खनियारा, खड़ोता, जूहल, अगंजर महादेव और आसपास के नेचर पूल व झरनों वाली साइट्स पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। जी दोस्तों, लोग यहाँ ठंडे पानी, पहाड़ों और प्राकृतिक वादियों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पर्यटकों की लापरवाही प्रकृति के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। बता दें कि नेचर साइट्स, खड्डों और ट्रैकिंग रूट्स के किनारों पर प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स और कुरकुरे के रैपर और नशीले पदार्थों की बोतलें और अन्य कूड़े के ढेर बड़ी मात्रा में दिखाई देने लगे हैं। इससे स्मार्ट सिटी धर्मशाला की सुंदरता खराब हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटक यहाँ की स्वच्छ हवा और ठंडे पानी का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। आईपीएल सीजन के चलते भी धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है। देश विदेश से आए क्रिकेट प्रेमी, खिलाड़ी और उनके परिवार भी आसपास की नेचर साइट्स का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में जगह जगह फैला कूड़ा बाहरी राज्य और विदेशी पर्यटकों के सामने धर्मशाला की छवि खराब कर रहा है। जी दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार सबसे बड़ी समस्या इन पर्यटन स्थलों पर डस्टबिन की कमी है। कूड़ादान ना होने के कारण लोग खाने पीने का सामान इस्तेमाल करने के बाद वहीं फेंक रहे हैं, और ऐसे में ये सबसे बड़ी समस्या जो इस समय स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए बन चुकी है। तो कैसे इसका समाधान किया जाए? दोस्तों, तो समाधान लोगों ने यही बताया कि डस्टबिन जो है वो नहीं है, उसकी वजह से शायद ये चीज़ है। तो प्रशासन को, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आसपास के लोग हैं मिलकर एक डस्टबिन लगा भी दे तो क्या ही हो जाएगा, जब हम इतना अपने, क्योंकि हमारी जो सिटी है, हमारा जो समाज है, उसे खूबसूरत बनाने के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो खैर आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें पता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ की खासियत को बढ़ाती है, अब खड़ोता की ही बात करें, क्योंकि सभी घूमने वाले प्लेस एक ही जगह तो है नहीं, तो वो हर अलग अलग जगह और अलग अलग गांव के लोग वहाँ पे रहते भी हैं। तो जैसे खड़ोता की बात है, तो वहाँ के लोग मिलकर एक डस्टबिन वहाँ लगा दें तो शायद कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जब तक हम इस विश्वास के सहारे बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा इंसान आके करेगा, तो तब तक तो फिर बहुत देर हो जाती है ना। तो ऐसे में समझदारी यही है कि

अपनी तरफ से भी अगर हम कुछ कर सके तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz से।

बस थोड़ा सा इंतज़ार, और कहते हैं ना कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं सड़क और अवसर दोनों हर किसी के लिए खुले होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई मंजिल तक पहुंच जाता है और कोई रास्ते में ही रुक जाता है। इसलिए हालात चाहे जैसे भी हों, चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि रुकना ही तो हमारी हार की शुरुआत होती है। जी दोस्तों, तो हमें भी नहीं रुकना है जिंदगी में, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो फिलहाल मुझे तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं दोस्तों, समय है और समय के हिसाब से हमें भी खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो 11 बज चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ही हमारा ये साथ, हमारा ये सफर रहता है। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, न्यू शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है, मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कई बार बातें करते हैं कि दिल का प्रत्यारोपण हो सकता है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, गुर्दे का, किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर का ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जो हमारे हाथ होते हैं उनको भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है और हम किसी ऐसे इंसान के भी काम आ सकते हैं जो किसी दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो चुका है। हम उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम आपको इसी बारे में सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक हैंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है। हैंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट मतलब उनके जो दोनों हाथ हैं, अगर आप कहें तो कलाई से लेके पूरे हाथ उनके प्रत्यारोपित हो चुके हैं और वो अपनी नई लाइफ में इतने खुश हैं। जब ये दुर्घटना उनके साथ नहीं थी और तब वो जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो काम कर पाते हैं नए हाथों के साथ। तो चलिए हम देर ना करते हुए और पहले ना बुझाते हुए डायरेक्टली आपका परिचय करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है राहुल अहिरवार। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, टीकमगढ़ जिले के, और गुड़गांव और हरियाणा की किसी फैक्ट्री में ये ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करते थे। तो मैं इनकी पूरी स्टोरी ना बता के हम बात करते हैं इन्हीं से और इनकी ही जबानी हम पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर।
2: राहुल जी, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में अपने श्रोताओं को बताया है कि आप एक हैंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं, तो अब तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे ये दुर्घटना हुई थी और आपके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आप क्या काम करते थे।
3: मेरा नाम राहुल है, मैं एमपी से हूँ और अपने 12वीं के पेपर देकर हरियाणा अपने फैमिली के पास गया था। तो उसके बाद वहाँ मैं फैक्ट्री में ज्वाइन हुआ वहाँ काम करने के लिए, और उसके बाद 15 दिन काम किया और 16वें दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें मैंने अपने दोनों हाथ गवा दिए थे
2: जी।
3: फिर उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी, मानो एकदम खत्म हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया।
2: आपके घर में कौन कौन है राहुल जी?
3: मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, उनके दो बच्चे हैं और मैं।
2: और आपने बताया कि आपके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे और आप इसी फैक्ट्री में चयनित हुए थे काम करने के लिए, तो आप क्या स्किल ट्रेनिंग वगैरह कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ?
3: नो सर, मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे 2-3 महीने का छुट्टी मिलता है, तो उसके बीच में मैं काम करना चाहता था 2-3 महीने के लिए।
2: तो थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं, ये हादसा कैसे हुआ था, आप क्या काम कर रहे थे?
3: एक्चुअली जो फैक्ट्री थी उसमें मारुति गाड़ी के इंजन के पार्ट्स बनते थे, उसमें मैं वर्कर के तौर पर, जो हेल्पर होते हैं हेल्पर के तौर पर मुझे ज्वाइनिंग मिली थी। तो जो ऑपरेटर होते हैं उनके साथ में मैं काम कर रहा था। शायद आपने सुना हुआ पावर प्रेस एक मशीन होती है,
2: पावर प्रेस?
3: जी जी, फिर मैं काम कर रहा था। उसमें अपने दोनों हाथ से अंदर पार्ट लगाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर जो भी करना होता है वो ऑपरेटर करते हैं, उसके बाद फिर हेल्पर को वो बाहर निकालने होते हैं
2: जी।
3: तो मैं वो पार्ट अंदर लगाने के बाद मुझे निकालने थे, जैसे मैंने निकालने के लिए हाथ अंदर डाले तो पीछे से किसी और ने एक मशीन ऑन की और मेरे हाथों पर गिर गई। उसके बाद मेरे दोनों हाथ एकदम ही खराब हो चुके थे और मुझे फिर ESI हॉस्पिटल होता है जिसमें सिर्फ वर्कर का ही इलाज होता है
2: जी जी जी,
3: तो मुझे उसमें ले जाया गया। एडमिट किया गया और वहाँ पे मेरे हाथों को अलग करके ऑपरेशन कर दिया।
2: जी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब कभी ऐसा हादसा होता है और क्रश इंजरी होती है तो एम्प्यूटेशन बोलते हैं इस टेक्निक को, जिसमें हमारे जो खराब पार्ट है उसको हमें अलग करना पड़ता है क्योंकि हमारी जान को खतरा रहता है। तो राहुल के साथ भी यही हुआ कि उनके जो दोनों हाथ थे वो मशीन में क्रश हुए एंड उसके बाद उनको एम्प्यूटेट करना पड़ा। राहुल जी थोड़ा सा बताइए कि जैसे कब आपको होश आया, कब आपको ये पता चला और आपकी उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप? अभी आपने ऐसा सोचा था कि ये सब दोबारा ठीक हो पाएगा?
3: मशीन से बाहर निकले तो एकदम लटक चुके थे हाथ के, मानो कि एकदम खत्म हो गए थे। तो ऐसा मानना है लोगों का कि तुम बेहोश हो गए रहोगे, बट मुझे होश था, मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने हाथों को देख पा रहा था कि वो एकदम कुछ लायक नहीं बचे हैं, कि उसी स्थिति में मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, वहाँ के जो सर्जन थे उन्होंने मेरे फैमिली वालों को बताया कि ये हाथ अब ठीक नहीं हो सकते हैं और कुछ मतलब नहीं है इसमें करने का, अलग ही करने पड़ेंगे। तो सब की उससे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, वहाँ पे मेरी बेहोश करके हाथों को अलग कर दिया। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, हाथों पे पट्टी बंधी हुई थी, उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरा जो सपना था, मैं जिसके लिए पढ़ाई कर रहा था, वो सब खत्म हो गया। पता है आगे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत मैंने एकदम सदमे में चला गया था कि लाइफ ही खत्म हो गई है ऐसा।
2: बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ और आई थिंक सभी श्रोता भी समझ सकते हैं कि सिचुएशन में कैसा होता है। अच्छा आप एक पॉजिटिव बात बताइए, कभी आपने अपने मन में ये ख्याल लाए, कभी आपने भगवान से या अपने जो आप जिनको मानते हैं उनसे कभी प्रार्थना की हो कि कैसे भी करके ये सब ठीक हो जाए?
3: जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर पे आया, घर पे अकेला रहता था, तो एनी टाइम मेरी निगाह दोनों हाथों पर ही रहती थी कि कुछ महीने पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वो टाइम पे सोचते सोचते मैं फिर जब थोड़ा सा लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है।
2: किस तरह का सपोर्ट?
3: ऐसा कि वो एक अपनी मेंटली हेल्थ होती है कि अपन कैसा सोचते हैं, अभी अपन ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, कभी कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो उसके लिए मेरे भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ वक्त बिताया, मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया कि कहीं अकेला रह के कुछ गलत कदम ना उठाए। इस तरह का मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, बाकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। तो वो वक्त फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो मुझे लगा कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। तो जाता था मंदिर पर भी जाता था, वहाँ जो नए नए लोग मिलते थे, जो लोग बोलते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ सबका सुनता था, उसमें से होता था कि मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है। उनका टूटने के बाद इकट्ठा करने के बाद सोचा तो कहीं तो सुना था मैंने, और सोशल मीडिया से जुड़ा, इंटरनेट में भी मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ तो इंटरनेट की ही मदद, कुछ इंटरनेट से की है।
2: राहुल जी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, तो चलिए हम इस चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बात बताइए कि ये स्टोरी चेंज कैसे हुई। क्या आप पहले से हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में जानते थे? आप ब्रेक में जाने से पहले इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो किस तरह से आप इस चीज में आए कि हैंड ट्रांसप्लांट के लिए आपने आवेदन किया? क्या क्या पूरी प्रोसेस हुई, शुरू से बताइए आप थोड़ा सा।
2: जी, वही कि मैं एक मोबाइल था मेरे पास, उस पर मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, तो मुझे एक ऐसा मेरे मन में ऐसा फील आया कि क्या ऐसा होता है कि दूसरे हाथ लग सकते हैं।
1: बट आप मोबाइल ऑपरेट कैसे करते थे?
2: वो मेरे हाथ में जब तक जख्म था तब तक मैंने अपने पैर के अंगूठे से मोबाइल को ऑपरेट किया। उसके बाद फिर जब जख्म ठीक हुए, हाथ में थोड़ा मूवमेंट कर सकता था, तो उसके बाद एल्बो जो कोहनी होती है ना, कोहनी से मैंने ऑपरेट किया। उसी से सब कुछ करता था, टाइप वगैरह सब कुछ उसी से करता था।
1: बहुत बहुत बढ़िया राहुल। यहाँ पर मैं श्रोताओं को एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो हिम्मत मत हारिए। आपने अभी राहुल की बात सुनी और मैं खुद उनसे इंस्पायर हूँ कि एक नहीं तो दूसरा रास्ता खुलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन उन रास्तों की तलाश बंद मत करिए। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था तुरंत ये बात सुन के कि YouTube चलाते कैसे होंगे, और उन्होंने उसका आंसर तुरंत दिया। तो उन्होंने अपनी कोशिश बंद नहीं करी, आपको रास्ता मिलेगा। अगर जिंदगी में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, बिना आंसर के क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील होगी, कभी हौसला मत खोइए और अपनी तलाश बंद मत कीजिए। जी राहुल जी, आप बता रहे थे।
2: जी, तो वो सब मैंने अपना मोबाइल ऑपरेट करते समय वो देखा, मेरे मन में ख्याल आया, तो उसके बाद मैंने गूगल से सर्च किया, तो मुझे अदर बाहर कंट्री का, लंदन का एक वीडियो मिला जिसमें एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बच्चे का दोनों हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो वीडियो मुझे मिला। वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, हैंड ट्रांसप्लांट होता है। फिर मैंने उसके बाद अपने इंडिया के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, सारे स्टेट के सारे हॉस्पिटल का एड्रेस, नाम, नंबर सब निकाल के सबने पता किया। उसके बाद मुझे एक केरल में है अमृता हॉस्पिटल, तो वहाँ का एड्रेस निकाला, वहाँ के डॉक्टरों से बात की, फिर उधर मिलने गया हॉस्पिटल में। वहाँ से जो अमृता हॉस्पिटल में जो पहला ट्रांसप्लांट 2015 में हुआ था, मनु सर करके है, उनका दोनों हाथ का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था,
1: तो मनु अमृता जी, जी डॉक्टर अय्यर ने किया था वो ऑपरेशन।
2: जी, तो मैं उनसे मिलने गया था, उनसे मिला, उनसे बात की, उनको जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि हाँ, ट्रांसप्लांट होता है और ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे हाथ होते हैं, उसके बाद मेरा हौसला और बढ़ गया कि हाँ, अच्छा इन्होंने किया है, इनका हो गया है, जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे बात की, पैसे की जब बात आई तो उन्होंने कॉस्ट थोड़ा उठाता था, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो लगा कि इतना ना हम कर सकते ना हमारी गवर्नमेंट कर सकते।
1: करीब करीब कितनी कॉस्ट बताई थी आपने?
2: 2019 में मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे 50-60 लाख रुपया बताया था टोटल खर्चा।
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि इतना तो नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी और होगा, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कभी तो होगा।
1: जी बिल्कुल, कभी तो होगा।
2: जी, तो मैंने वो सर्च किया कि कभी क्या कोई जनरल हॉस्पिटल में कहीं होता है क्या, तो मुझे मुंबई की एक KEM हॉस्पिटल का पता चला, मुंबई में है वो।
1: जी,
2: और फिर वहाँ के डॉक्टरों का नंबर वगैरह एड्रेस निकाला, डॉक्टर से बात हुई।
1: लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, आपका जो ट्रांसप्लांट था वो मुंबई का पहला ट्रांसप्लांट था, हैंड ट्रांसप्लांट।
2: मुंबई में पहले एक और हुआ है, एक लड़की का हुआ था, उसका नाम मोनिका मौर्य।
1: अच्छा, ओके।
2: उनका बट उनका भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था।
1: ओके।
2: तो वहाँ मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी सब फिटनेस वगैरह हुई, उसके बाद
1: ये सब करने में आपको कितना समय लग गया? सारे हॉस्पिटल्स में कोची गए, देन मुंबई आए।
2: ये टाइम मैं सर सितंबर अक्टूबर से ही मैंने सर रिसर्च शुरू की थी, अगस्त सितंबर से। उसके बाद से करीबन करते करते मैं 2019 पूरा निकल गया और 2020 पूरा निकल गया था। 21 में मैं मुंबई पहुंचा था, फरवरी 2021 में मैं
1: जी ठीक है,
2: फिर 11 अगस्त 2021 को ऑपरेशन
1: जी ठीक है। यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं राहुल, एंड उसके बाद अपनी इस चर्चा को कंप्लीट करेंगे।
2: ओके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने छोटे से अंतराल के बाद। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे राहुल से, उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली एक डेढ़ साल की मेहनत के बाद फाइनली वो मुंबई पहुंचे एंड उनका ट्रांसप्लांट हुआ। हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं। राहुल, मुंबई में जब आप गए KEM हॉस्पिटल में, तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? लाइक आई नो आपके पास इतना हौसला था और कई सारी चीजें आपने अपने बल पर कर ली थी, लेकिन फिर भी परेशानियां तो आती ही हैं और बहुत सारी आई होंगी। पेपर वर्क होगा, बहुत सारा खर्चा, उन्होंने भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ तो खर्चा रहता ही है, क्योंकि ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: जी सर, जैसा कि आपने बोला कि परेशानियां, तो परेशानियां जब हम घर से बाहर कहीं अपने ही गांव के यदि कहीं बाहर निकले, अपने यदि अपने घर से बाहर कहीं भी निकले, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो तो हमारे LP से एक अदर स्टेट है, तो वहाँ पे जाना, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का रहन सहन सब अलग है, तो परेशानियों का तो थोड़ी परेशानियाँ हुई थी। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी मेरे हाथों की थी, जो उसके सामने कुछ और परेशानी नहीं थी।
1: बिल्कुल जी।
2: तो वो सब, और मैं जहाँ भी गया हूँ, मेरे भाई मेरे साथ थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी भी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे मिले, उन्होंने एडमिट कर लिया था पहले तो, और एडमिट करने के बाद जो एक फिटनेस होती है, फिटनेस निकलवानी पड़ती है अपने को कि अपनी बॉडी फिट है ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं
1: जी।
2: तो वो सब करने के बाद 2 महीने का टाइम लगा उसमें, ऑल बॉडी चेकअप होता है उसमें
1: जी। और करीब कितना खर्चा है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सब चीजों का?
2: फिटनेस में अपना उतना ज्यादा खर्चा नहीं आता, वही 4-5-6 हजार रुपए में सब हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 हजार।
1: मैं पूरे ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ।
2: सर, ट्रांसप्लांट में तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए आपको जनरल हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल में कम से कम 10 लाख
1: जी। तो कैसे आपने ये नीड पूरी की अपनी?
2: सर, उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है, अपने को जो HOD मैडम है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की
1: जी,
2: वो ही अपने को एक एस्टीमेट बना के देते हैं कि आपका इतना खर्चा आएगा, उस पे कॉस्ट लिखा रहता है, तो अपन वो कहीं से भी करवा सकते हैं।
1: मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी बहुत हेल्प करी इस चीज में, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिकॉज मैंने पहले भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और उन लोगों ने भी यही बताया कि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और सरकार बहुत हद तक अपने मतलब प्रोटोकॉल से बाहर जाकर हेल्प जरूर करती है ऐसे केसेस में।
2: जी सर, एक्चुअली कैसा रहता है कि एक तो जैसा अपने को जो कॉस्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिलता है
1: जी,
2: वो और अपने अपन को एक लेटर लिखवाते हैं, अपने जो MLA होते हैं, अपने क्षेत्र के एक MLA होते हैं
1: जी,
2: उनके पास जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं, उनको एक लेटर देना पड़ता है, और फिर वो अपना लेटर और वो एक अपने तरफ से लेटर लिख के CM को देते हैं, CM को भेजते हैं, तो फिर CM फंड से पैसा आते हैं। और बस ऐसा रहता है कि कोई स्टेट जितना कॉस्ट रहता है उतना दे देती है, बट कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती है जो 100% नहीं देते
1: जी।
2: तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है कि जितना मेरा पैसा था उतना ही उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया।
1: और इन सब प्रक्रिया में जो सरकारी प्रक्रिया है, आपको कितना टाइम लगा? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, या जो हमारा चलन है कि राजनीति में या फिर पॉलिटिशियंस के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, विधायक MLA जो आपने बताए, तो इन सब में आपको करीब कितना टाइम लग गया?
2: जब मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आया तो मैं पहले सबसे पहले अपने MLA के पास गया, उसमें मुझे करीबन 2-3 महीने मैंने इधर से उधर पता, लेकिन मेरे MLA बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान किया, मेरी सिचुएशन को समझते हैं कि मेरी परिस्थिति कैसी है, उनके ज्यादा परेशान नहीं किया, मैं 1-2 बार ही उनके पास गया और मेरा काम हो गया। बट पैसा हो गया, सिर्फ CM फंड से पैसा आने में टाइम लगता है, तो वही 5-6 महीने में पूरा पैसा हॉस्पिटल में पहुंच गया।
1: तो आते हैं ट्रांसप्लांट की बात, जब ये ट्रांसप्लांट हुआ, सक्सेसफुल हो गया, जब आपको होश आया, तब आपका आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपके परिवार वालों की प्रतिक्रिया? जो चीज कभी सोची नहीं थी वो पूरी हो गई थी
2: जी। तो सर, उसमें ऐसा है, जब मैं ओटी में गया उसके बाद जब मैं ट्रांसप्लांट हो गया और मुझे आईसीयू में भेजा गया, मुझे होश आईसीयू में आया था, मैंने देखा मेरे दोनों हाथों पर पट्टी थी, ट्रांसप्लांट मेरे एक हाथ का हुआ था, राइट हैंड का ट्रांसप्लांट हो गया था बट लेफ्ट हैंड का थोड़ा सर्जरी इशू की वजह से वो नहीं हो पाया।
1: जी, तो अभी एक हाथ का हो चुका है आपका।
2: जी जी, टाइम पे आई थिंक मैं था और मेरे साथ डॉक्टर्स थे, मेरी फैमिली को अलाउ नहीं था अंदर आना
1: क्योंकि 2021 में कोविड चल रहा था आई थिंक, तो शायद उसके रेस्ट्रिक्शन होंगे। आपने बताया कि 2021 में फिर आपका ट्रांसप्लांट हुआ, अब 2022 चल रहा है, तो अब आप कितनी एक्टिविटीज आप उस हाथ से कर पाते हैं?
2: सर, एक्टिविटी को तो मेरा मानना है कि मैं अपना 100% इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं जाना है तो जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
1: शो की शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी कि जो चीजें आप इस घटना के पहले कर पाते थे उससे ज्यादा बेहतर चीजें आप करने लगे हैं, थोड़ा तो उसके बारे में बताइए किस तरह की ऐसी बेहतर चीजें जो ट्रांसप्लांट के बाद ज्यादा अच्छे से करने लगे हैं आप?
2: सर, एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद मैं 100% दूसरे पर डिपेंड हो गया था, मैं खाना खाना है तो भी किसी दूसरे के हाथ से खाना है, पानी पीना है तो भी दूसरे के हाथ से पीना है, कहीं जाना है तो दूसरे का वेट करना है कि कोई साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ भी करना है तो दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता था, बट अभी मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, नहा सकता हूँ, कपड़े पहन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, कंप्यूटर पे काम कर सकता हूँ। अभी मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, आई थिंक थैंक यू मेरे डॉक्टर जिन्होंने मुझे इस लाइक बना दिया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बॉलिंग कर सकता हूँ, बैट भी पकड़ सकता हूँ, और उसमें भी मैं मेहनत करता जाऊँगा तो और अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि 90% मैं अपने जो मेरे एक्सीडेंट से पहले जो मेरी लाइफ थी वो मैं 90% अपनी लाइफ वैसी ही जीने लगा।
1: राहुल जी, हमने सब चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ जिसका है इस पूरे घटना में, इस पूरी अच्छाई में, वो है एक डोनर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको अगर आप धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप शो के माध्यम से भी कह सकते हैं।
2: जिन्होंने मुझे हाथ दिया, मैं उनसे अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उस फैमिली को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतनी महान फैमिली, जिन्होंने अपने अपने फैमिली मेंबर्स का एक जो ऑर्गन होता है अपने दोनों हाथों से उन्होंने दान की, उन्होंने ये सोचकर कि चलो हमारे तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे हमारी द्वारा किसी दूसरे की लाइफ यदि संभरती है तो वो ये सोचकर एक पॉजिटिव माइंड लेकर आगे आए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्य का जो ऑर्गन है वो डोनेट किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि उनसे मिलूं बट मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, मेरे लिए अननोन है, लेकिन मेरे लिए बहुत भगवान के समान है वो, जिन्होंने मुझे एक लाइफ दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
1: बिल्कुल राहुल, हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं अंगदान को लेकर, उन सब के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी जो श्रोतागण हैं उनको, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिथ्स हैं अंगदान को लेकर, बहुत सारे लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते, तो उन सब लोगों को, क्योंकि आप एक लिविंग एग्जाम्पल है जिनको ये अंग मिले और किसी के हाँ कहने पे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो आप सबसे अच्छे पर्सन है इस मैसेज को देने के लिए, तो अगर आप श्रोताओं को अगर इस बात पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
2: जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। आप कभी कुछ भी पुण्य मत कीजिए, यदि आपने एक ऑर्गन डोनेशन किया है तो आप एक ऐसे इंसान की लाइफ सजाते हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है। यदि किसी की बॉडी संस्कार होती है, आप उस बॉडी को लेकर के उसका संस्कार करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यदि कोई ऑर्गन डोनेशन करता है, ऑर्गन डोनेट करता है, तो वो इंसान का पेट उसका कुछ अंग हमेशा जिंदा रहता है, उसकी यादें जिंदा रहती है, आप उसको हमेशा जिंदा देख सकते हो। इसके लिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, ऑर्गन डोनेट करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, लोगों को जागरूक करें कि हर एक ऐसे इंसान की जिंदगी बदल जाती है जो कभी सोच नहीं सकता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, जो अपनी जिंदगी से हार जाता है, थक जाता है, और अपने इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑर्गन न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनको नया जीवन दिया जा सके।
1: राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। मैं श्रोताओं को भी यही कहना चाहूंगा कि जैसा राहुल जी ने कहा कि एक इंसान अगर अपने अंगों को दान करके जाए तो वो एक नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां संवार सकता है। तो मेरी भी आपसे यही अपील है कि आप अंगदान के बारे में जरूर जानें और जानने के बाद अपना निर्णय लें कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जानने के बाद नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, फैसला आपके ही हाथ में रहेगा, लेकिन जाने जरूर। तो चलिए यहाँ पर हम इस शो को खत्म करते हैं और जल्दी ही आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। राहुल जी का भी हम धन्यवाद करते हैं एंड उन डॉक्टर्स का भी, डोनर फैमिली का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीजें पॉसिबल कर देते हैं ये लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो ऐसे डोनर हों या उनकी फैमिली हो, जो इतने दर्द के समय में भी इतना कठिन निर्णय करते हैं। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120364 पर फोन कर सकते हैं या info

0: एकता का परचम चहु ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

सत्यो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहना जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने होए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है। ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 MHz पर ए तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहा सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पर।

धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने

0: का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती हैं। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान

0: पहले किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: क्या देना? नो शेयरिंग।
0: मामा,
2: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
4: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर आऊँ तो जोगी तुम अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर हा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हा सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोता तुम्हें उम्मीद करने हो तुम्हें हाल चाल खरे बुने तो सब ठीक बुने और अपने घरे खुश बुने तंदुरुस्त बुने हिन। और खासकर जड़ी जड़ी वोट इन आज था 28 तारीख का हिन जड़ी जड़ी वोट इन सो वोट पाना जरूर गुछूरे बुने हिन श्रोताओं। और इस बीच में क्या सो बिल्कुल वोट पाना बड़ा ज़रूरी भी है, इंदा अपना दायित्व भी है कर्तव्य भी है। और सोगी सोगी महापर्व है ना जी, और लोकतंत्र का महापर्व है और रीति में शामिल होना बहुत ज़रूरी भी है। होप सो कि तुम सब भी ये वोट किया सो ज़रूर पाए बुने। और सोगी सोगी बिल्कुल वोट तो ज़रूर पाए बुने ना। और सोगी सोगी किया सो लाइनी में भी लगे बुने है ना, लाइनी में लगने रहा कुछ अपना ही किया सो दिलचस्प या अपनी कुछ फीलिंग आ। हालांकि आऊँ टीका चाहिए गल करूँ शो तो थोड़ा करी किया समय ज़रूर लगो करता है क्यों कि तू वो पता कि पांच जगह के सो तुसु ठप्पे के सो लाने मोर के सो लाने है ना, तो थोड़ा करी समय के सो ज़रूर लगूँगा बुना। और बिल्कुल प्रशासन भी

0: ये सब मौजूद है। और जो भी जसरा जो भी निर्णय इला सो आई थिंक 10-11 मतलब है मनिकर चिल्ड्रन की इतना की सो बच्चे गाने ने। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो सब हूँ कर दें रेडी गुंजन में बिल्कुल लाइव जुड़ी सकदन 708-8-8-7-09 पर नंबर आख मौके फेरी 708-8-8-7-09 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकदन और कॉल कर करी अपना पसंदीदा गीत होनी सकदन अपने क्षेत्र रे जानकारी की सो साझा कर सकते हैं। श्रोता यह गल्ला रा विशेष ध्यान रहे कि जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो वीडियो मंच दसने लायक किया श्रोताओं सो जरूर हुआ है ना। तो ये श्रोताओं चल दिन हगो और आगाज तो जरूर करना हा सो आगाज रा इंतजार किया सो सब यो जरूर हुंदा लेकिन तथों पहले ज़्यादा जरूरी रहिंदा है धर्मशाला रा मौसम हेरना कि धर्मशाला रा मौसम किया सो क्या बलदा हा। अज हालांकि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल भी रहो करंट टेम्परेचर जो आ सो इस समय 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास आ सोते हूँ और अभी 20-24 डिग्री रे आसपास की सो इस समय करंट हा। और ह्यूमिडिटी की गल करूँ सोते हूँ तो ह्यूमिडिटी की आ सो इस समय 51% था। बहरहाल इन श्रोतागण आसो के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुण बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: क्या हाल चाल है।
0: बहुत बढ़िया जी कुण बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन।
1: सर कंड कंडियाने बल्लू करता है।
0: अच्छा कंड कंडियाला।
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है। और नोएडा जी।
1: नोएडा जी आज इलेक्शन है ना।
0: क्या बात है कंड कंडियाला इलेक्शन आज है ना।
1: पांच बजे बाद रिजल्ट निकल जाना।
0: पांच बजे बाद तूनी तोले तो ना निकलना कि निकल तूनी तोले तो उम्मीद नहीं मुझे कि निकल गया साथा ज्यादा तोले बोले था भी
1: बेटी बूटी था चलिए ना जो पारो।
0: अच्छा चलेगी ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा अच्छा कितनी कितने कितनी वोटिंग है तुंदी बस है।
1: इंदे ना सर 850
0: वोट है।
1: हाँ जी ही है ना तो कुछ पर है तो 850 करी इतना ही।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ मैनू कर लेंदा जेडी भी घर चाची खड़ भी।
0: हाँ जी
1: कोई पता नहीं हाली क्या बनना मैनू बाड़ा कौन सुनी लेंदे आज।
0: चलिए बिल्कुल चाची जी जो बड़ी शुभकामनाएं मून और
1: थैंक यू सर।
0: हेरा जसेरे मथे पर राज तिलक लिख रहा ना सेरा चलना ही चलना।
1: हाँ जी हाँ जी सर वो तो
0: ये तो उस ऊपरा रे ऊपरा वाले भी दया बोले ना तेरी दया
1: बोले ना जेड़ा करना बढ़िया है करना।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी सर।
0: हाँ जी
1: गाना सुनाई दे सर सुनील राणे का कोई दिया।
0: जी जी कौन देना होना सुनील राणे जी रा
1: वो जेड़ा वो नहीं बेड़ा दे पालनगा।
0: अच्छा
1: हां जी हां जी चाचा मेरा चाचा बेड़ा वाला ना से चाची खड़ भी था सी थोड़ा ये चली लागे सारा चली जाना थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा
1: हां सर फोन ने चुकने का थैंक यू।
0: अरे भाई कमाल
1: सब बल्लू रेडी 10 12 जने ना सब बल्लू दे बल्लू थैंक यू फोन ने चुकने दाई
0: जी। तुंदा अपना कार्यक्रम है और आउंदा अपना सचिन कपूर कोई ऐसी गल नहीं है।
1: हां जी हां जी सर।
0: आना जी।
1: हां जी हां जी सर
0: ठीक है जी धन्यवाद।
1: थैंक
0: यू जी धन्यवाद। भेड़ा तो खेरे पालणु आएगी थुणना ना जी तुसु।
1: हां जी हां जी हां जी सर
0: बिल्कुल हुण ले।
1: ठीक है सर जय श्री राम।
0: नमस्ते जय श्री राम। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो इस बी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़न देन और कार्यक्रम मंच हाँ आगाज भी जरूरी है और फरमाइशा भी जरूरी है ता जितनी भी फरमाइशा सोसु जरूर पूरी करनी ना। बहरहाल तो सब जुड़ी सकते हैं जी 708-8-8-7-09 पर कॉल करी करी और कर और जड़ जड़ी भी इलेक्शन हैं अगर सोहण कर देने इनकी आवाज़ और जुड़ना चाहते हैं रेडी गुंजन सोगी तो जरूर महाराज जुड़ी सकते हैं। तो है नंबर में तू दसीता इस नंबर मंच तो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जी आगाज कर लेंदे और जिंदगी वाकई में खूबसूरत है श्रोताओं सोने जिंदगी और जिंदगी अच्छी बया बस है जीना की असो देरी तो शुरू कर देना है ना। तो आइया

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर दें जनाब अपने वीडियो सेट में आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़े दिन इंदे बहुत सारे श्रोतागण जो असु रेगुलर होंगे हैं इंदे आके योली रहे श्रोतागण थी है जो कि अब जो मुंजो मुड़े कोई करीबन पौने त्राई बजे वोट पाना चल रही थी योली टिकट से तैयार रहे इंदे श्रोतागण हालांकि सुगद्दी कम्युनिटी थो नहीं ना लेकिन फिर भी किया सो बोलते कि असू इंतजार रहा चूर बजने रहा जहने भी चूर बजदन तहने है कि असु प्रोग्राम लाई लेंदे तुंदा तो चली जी इतना सेवा इंदे और सो है कर दिन कि अपने मनु जागरूक करते हैं अपनी बोली अंदर है ना और इतना तुंदा प्यार है बड़प्पन है कि तू है गद्दी कम्युनिटी जो जो आ गद्दी बोली जो जो आ इतना प्यार कर दिन बरहाल इंदे श्रोतागण असू के कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बोलूँ दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: जी
0: नमस्ते जी क्या हाल चाल ने कौन बल्लुंदे और कड़ी थो बल्लुंदे हाँ
1: ट्रायल में खा रहे ना ना बंद कर दे
0: अच्छा कड़ियों बल्लुंदे जी
1: डाटा हाँ बैंक के मेरे ना
0: अच्छा अच्छा डाटा थो और ठीक ने डाटा आ रहे
1: हाँ जी अंजी साहब खा रहे बच गया
0: करे करे लगुरन
1: कर लगना है तो लगे फिर गाने वो बंदे ना
0: अच्छा चलिए जी तो तुम दे क्या फरमाइश है क्या गीत होना तुसु
1: वो गीत होना माता रबा जी ना फुल्ला रे क्यारी में रहंदी मेरी माँ
0: फुल्ला रे क्यारी में जब रहंदी मेरी माँ
1: वो दिल फुल्ला दा बुलाया मेरी माँ
0: अच्छा जी जरूर होना लेगी तुसु
1: हाँ जी हाँ जी ठीक
0: है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद चलिए इंदे अगले श्रोता हसू के कनेक्टेड हैं पूछ दन कौन बोलूं दे और कड़ी थो बोलूं दे नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार बहुत बढ़िया जी आवाज बड़ी दूर हो इच्छु कर दे आ
2: हेलो सचिन जी ठीक ठाक नमस्कार
0: हां जी बहुत बढ़िया जी नमस्कार नमस्कार तो भला तो ठीक ठाक ना
2: ठीक ठाक जी
0: और करे करे लुगरन
2: बस तो ही खाने पीने का काम बोर्ड बाट पाया है अब थोड़ा मजबूर अब खाने पीने तैयारी कर लेते हैं
0: अच्छा पाया है ना बोर्ड
2: तो बोर्ड तो पाना तो चाहिए पता
0: बिल्कुल आजादी तो बाद तो सुआज मौका मिलो उन्हें वोट पाने रहा ना जी
2: हाँ जी
0: मैं कहा आजादी तो बाद तो सुआज मौका मिलो वोट पाने रहा
2: सच्ची आप क्या बन जाए सचिन जी क्या बन जाए कितने साल हूँ बाद अच्छी पता लगी क्या है पंचायती है वोट पाए ना
0: आज पंचायती है वोट पाए हैं
2: जी
0: क्या बात
2: बड़ी मुबारक है इंदर प्रधान पंच चिल ले इंदर काम कर ले
0: चलिए उम्मीद सब भी हुआ कि प्रधान उप प्रधानीन और काम करन बाढ़ पांचीन काम करन लेकिन ये जहने तिया धरातल महीना और तथों बाद जहने तिया आ रहा एक्टिव मोड की ऐसा ओन बुना ताई पता लगना कि कितने करे लायक हैं और कितने करे जनता की ऐसो कसी वोट दे करे कि ऐसो तड़ी तक पहुँचाओ है ना हाँ जी
2: उम्मीद तो रख रहे ना किन का काम होने ना
0: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पर तो दुनिया कायम है जनाब
2: जी
0: तो कुंदे ने गीत होना पसंद कर ले
2: तेरे बांसी ने जादू का पाता गीत हमारे सबसे ज्यादा
0: किसे रे जी
2: तेरी बांसी ने जादू का पाया
0: अच्छा
2: तेरी बांसी ने हेलो
0: हाँ जी हाँ जी तेरी बांसुरी माँ जादू के पाया
2: थोड़ी चली गई तेरी बस तेरे गाना सुर बड़ा आ गई थे
0: ठीक है जी
2: ठीक है सचिन जी धन्यवाद तो है पाओ वोट की
0: है बेगा है 7 बजे लाइन ही है लग रहे तो 10 बजे बाहर हुआ है
2: अच्छा अच्छा मैंने तो मंगी गीत हाउ कर लेता वोट बार कुछ ना पाऊंगा
0: ना जी गीत हुनाना तक लग गल और गीत ही ना हुनंदा एक कार्यक्रम तो सो इस गल्ला रा बड़ा खास पता पूना चिंता को तो इंदे रेगुलर शो था ना कि कार्यक्रम किया असु इंदी बोली हो कि जोड़दा जो युवा इच्छुक करते ने इन्यो थोड़ा रखदा कि हाँ भाई रेडियो मंच के सो इंदा गादा कार्यक्रम चल रहा था एक कम्युनिटी की है सो इंदी बढ़िया कम्युनिटी इंदी बोली की है सो मतलब हाँ बोल लेता है जीवित रखना सो है ना अनेक प्रकार की जानकारी
2: रेडियो गुंजन दी बजा और कुछ ऐसे बुजुर्ग आप जानकार बारे तो गल्ला कनंदा ना कि सेवा सेवा कराए बड़ी मतलब आप बड़ा उच्च तबके दी तो गल बंदे ने जेड़ा मनु सुधार बंदा कि जगह ना ये चीज होनी करे बाकी ये चीज जाने जरूरी ना सी इन समाज में जे
0: जी जी
2: ये बड़ी चीज जरूरी
0: है जी
2: जी
0: चलिए ठीक है जी कोशिश आइंदी जारी बाकी अभी जनता रा प्यार है जी जनता किस प्रकार होगी चंद या प्यार दिंदे है ना
2: जी जी सिंधी गल्ला अच्छी बढ़िया रुदा अपनी हुनदेश करके तो जनता ना सो प्यार कर दे बहुत ज्यादा
0: धन्यवाद जी तुंदा प्यार आशीर्वाद है
2: जी जी धन्यवाद जड़ी गुंजना तुंदा भी तुंदा भी जड़ी गुंजना वाला
0: जी धन्यवाद जी धन्यवाद श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून को रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो बिल्कुल लाइव चल रही हैं। चलिए कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच श्रोतों इन अगले श्रोता असोगी बिल्कुल कनेक्टेड हैं कनेक्ट कर दें पुस दिन कुंड बल दें नमस्ते जी हेलो
3: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार हेलो
3: हाँ जी हाँ जी नमस्ते जी सचिन जी नमस्कार
0: नमस्कार जी कौन बोल रहे और कड़ी था बोल रहे
3: सुरेश कुमार बोल रहा बारह गोटे काला बोला ऊपर
0: अच्छा अच्छा
3: जी जी
0: और सुरेश जी कर रहे लुगुरिन क्या नोईता जी
3: दुकान ना सर है
0: अच्छा
3: जी और तो ना
0: दुकान ना बकुरे ने अच्छा सुरेश जी कुंडे ने गीत होना पसंद कर ले
3: गीत तो कोई भाई मतलब इनके गुण वाली देख रहे भाई है ना पर ये इलेक्शन वाली चल चल गई ना जी जी
0: हां जी
3: इलेक्शन चल चल रही है इलेक्शन जी
0: जी जी जी जी
3: जी जी चलो मैं जिले इन दल को रोड पहले पूछ गया 26 को वोटिंग छू रही ना
0: हां जी
3: जी जी चलो जिले ऐसे चुने सो चले आए सो शायद ना
0: हां जी
3: हां जी बाकी आज इन द स्टेट धंधे पे पंचायत में तभी चल गया इलेक्शन आज ना
0: हां जी
3: जी तो संख्या निकलना चलते हैं 7-8 बजे ना
0: अच्छा
3: जी जी
0: चलिए ठीक है जी एक दिन क्या बनता क्या ना बनता
3: चलो चलो चलते रहना है का जल्दी अंदर चल गया ना लक्स ना चलो
0: हां बिल्कुल गुणी वाली माता रे भजन तो है बल्लो जरूर होने ले जनाब
3: चलो अब मैं चलता के चलो मैं कोई नहीं दई चले आए ना नहीं अपने संत रे प्लस मेरा कोर भी मेरा बन जा थोड़ा चूल्हे तो ना जी
0: जी
3: जी सो भी चलो जितती प्रधान से बनेगा ना
0: अच्छा क्या बात है
3: जी चलो ठीक है चलो ये तो ऊपर वाले थे
0: बिल्कुल बिल्कुल बस अब जनता ये चांद देगी
3: अरे के जनता स्विच इन दे ऐसे ये चुने कर जेड़ देने सो काम करान बस बाकी ना स्विच इन दे ना
0: हां बस
3: मेन ना कमा सो मकसद मैं ना कि मेरे घर काम करना
0: हां जी
3: ठीक ना सो काम चिंता मतलब पब्लिक का काम करना ना कि मेरा किल्ला काम करना कोई भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी राशि का पब्लिक का तो प्यार है पब्लिक का चुनते जिया जो था तिया जा तिया रा फर्ज है पब्लिक का काम करने सो
0: जी
3: ठीक है ना तो मैं आऊं पर लेकिन मेरे घर काम पर मेरे डंगा लाए चूस होना चिंता सी बस ठीक है ना अब चिंता के जेड़ा इनका मतलब पब्लिक का काम सो मतलब रोड रास्ता जो बनता है ना सो काम करता सो से तम दिन भी ओसिया ठीक है ना आऊं चल किले रे काम बस होना कदम लेने ना इतनी बोझ पाना सो ठीक का और त्यार अपना खर जा जनता चुने तो जनता का काम कर सो तो सो बढ़ गया
0: जी जनता
3: तब वो ना रहने चक्कर का 12 घंटे साइडिंग दे बस है चाय पानी पीने वास्ते
0: जी जी जी
3: ठीक है सर धन्यवाद
0: ठीक है जनाब धन्यवाद
3: ओके
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो होनू कर देना श्रोतों का आंगड़ा में आज दूजे चरण में के सो मतदान भूचू कर दो 282 पंचायत जो के सो आज प्रधान मोलना हा श्रोतों है ना जी 1616 पोलिंग बूथ पर लोकतंत्र रहे महापर्व महापर्व जो पोलिंग पार्टी है कि ऐसो संभालना मोर्चा शो तो जिला में आज दूसरे चरण रे परीक्षा है पहले चरण में कांगड़ा री 287 पंचायत जो मूल है ने नो है मुखी है शो तो है ना और 4 महीने वे लंबे इंतजार खत्म महिला शक्ति वेदम पर पहला चरण रा रण किया सो फतेह करो हा शो तो अन्य जानकारी तो सो गया सो जरूर शेयर करनी हिंद श्रोताओं कार्यक्रम तो सब आरजे सचिन कपूर सो गए बिल्कुल लाइव हूँ कर देना अपने अपने रेडियो सेट में। दूजे चरण में नगरोटा भगवा में आज के आ सो 1961 और 283 रे भाग्य व फैसला गया सो बुना हा श्रोताओं। तो चलिए हार जीत तो लगी रहन दिया लेकिन फिलहाल इंसान जो है सेरा व्यक्तिगत रूप थो इंसान खराब होने चिंदा सेरा जो लेन देन है जो गलबात है सो खराब होने चिंदे। बहरहाल फिलहाल लेकर चल देने इस गिटारी की नारी

कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा कैन सो चल रही था। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले सभी श्रोता गणरा। तो है बिल्कुल असू की जुड़ी सकते हैं और कार्यक्रम मंच बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 7081 8179 पर कॉल करके अपना पसंदीदा गीत जरूर होने सकते हैं। और सोगी सोगी श्रोतो अपने क्षेत्र जानकारी अगर तू लगता कि अपडेट कुछ देने वाले तो सो जरूर दे सकते हैं। श्रोतो बन सुरक्षा वे सरकारी दावे इस साल भी धुआं धुआं। श्रोतो आखी रेंज में 100 हेक्टर वन क्षेत्र स्वाब हुआ सरकारी योजना है धरातल पर के न सो बिल्कुल ठस बूंदी के न सो नज़र इच्छु कर दी हिन श्रोतो जी बिल्कुल। कितने बड़े वन 100 हेक्टर वन क्षेत्र के सो स्वा करीता आगे मन जो धुआं धुआं किया सो 100 हेक्टर वन क्षेत्र गया सुबुचिगो हा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड आड़े के न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया सो नज़र अपने पक्के ना करू करता सो पैर अपने पक्के ना करू करता कि जो इस प्रकार हो गए 100 हेक्टर वन क्षेत्र आगे सो बर्बाद करू करता तसियो पकड़े सकने। और चलिए कार्यक्रम जो है वृंदन श्रोतों स्मार्ट सिटी धर्मशाला भी सुंदरता पर गंदगी रा दाग जी भी बिल्कुल श्रोतों जो पर्यटक थी है यारी लापरवाही थों गंदगी भी चपेट मा के सो प्राकृतिक इंदे स्थल के न सो आए इन श्रोतों खड और झरने रे किनारे प्लास्टिक कचरे रखे न सो मुल्क ढेर हेरने जो मुड़े शतो। गर्मी थो राहत पाने वास्ते के इन दिनों में देश रे मैदानी इलाके में बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पूज रहे हैं खासकर खनियारा खड़ोता जूहल अगंजर महादेव और आसपास रहे नेचर पुल व झरने वाली साइट्स पर के आसो पर्यटकारी आवाजाही लगातार बढ़ू कर दे है शतो। मनु जो ठंडा पानी पसंद है पहाड़ पसंद न और प्राकृतिक वादी प्राकृतिक वादी व आनंद के न सो लेना बड़ा पसंद है जो इंदे पर्यटक इंदे तीनों है ना और आनंद लेने वास्ते बुजुब करते। लेकिन कई जगह पर क्या सो पर्यटक री लापरवाही प्राकृतिक रे वास्ते के सो चिंता रा कारण बनते चल रही है शो तुसु सभी उदसी नेचर साइट्स खड्डा और ट्रैकिंग रूट्स रे किनारे पर तो है प्लास्टिक री बोतल हेरले चिप्स हेरले कुरकुरे रैपर हेरले शराब री बेर री खाली बोतल हेरले तो तुंदा दिल के सो फटेगा ने अन्य कूड़े वे ढेर बड़ी मात्रा में के आसो इन साइट्स में हुजू कर दे हिन शो तो इस तुम स्मार्ट सिटी धर्मशाला भी सुंदरता खराब बुचू कर दे हाँ और सुंदरता काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है देश तो स्थानीय मनु रहे बलना हा कि पर्यटक रे स्वच्छ हवा और ठंडा पानी व आनंद किया सो लेवता कर देन लेकिन सफाई व ध्यान किया सो ना रखू कर देन। आईपीएल सीजन रे चलते भी धर्मशाला में पर्यटक की संख्या बड़ी हुई है शोतों देश विदेश थो चूरे क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ी और त्यारे परिवार रे आसपास रे नेचर साइट्स रे रुख करू कर देन ऐसे में जगह जगह कूड़ा के ऐसो फैलाव कर देन और बाहरी राज्य और विदेशी पर्यटक रे सामने धर्मशाला भी छवि किया सो खराब चू कर दे है शतो। स्थानीय मनु रे अनुसार सब थो मोटी समस्या इन्या पर्यटक स्थल पर डस्टबिन री कमी है कूड़ा दान ना भूने रे कारण मनु के सो खाने पीने व सामान इस्तेमाल करने वे बाद के सो फेंके दिच्छू कर देन। मनु है प्रशासन और नगर निगम थो पर्यटक स्थल पर पर्याप्त डस्टबिन लगाने भी नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और गंदगी फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने रे किया सो मनु है मांग करे हर्षोतों। बहरहाल कार्यक्रम मंच ये चले रहने तो ये सब बन रहे ने इस समय आर जे सचिन कपूर सोगे और आइए अगली फरमाइश किया सो पूरी कर देन असोगे भणे रहा जुड़े रहा।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो बिल्कुल लाइव चल रही है। तो ये श्रोता बंदे अगले श्रोता जो कनेक्ट करते हैं तो सोगे नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल न?
1: ठीक।
0: और कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन?
1: कंडी से बनने का बोल रही हूँ।
0: अच्छा कुंडल की थोड़ना तो सु
1: काना तेरी बांसुरी
0: काना री बांसुरी
1: हाँ।
0: काना री बांसुरी की थोड़ना।
1: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तो सुए गीत है।
1: हाँ
0: ठीक है जी।
1: बहुत अच्छा लगता है आपका रेडियो स्टेशन मुझे।
0: हाय थैंक यू सो मच जी। और थोड़ी थोड़ी गद्दी
1: सुनती हूँ।
0: अच्छा तो तुसु गद्दी नहीं थी, गद्दी बलना सीखा थोड़ थोड़ है ना? थोड़ थोड़ सीखा कुंडली क्लास मन का स्कूल पढ़ दिन
1: थोड़ी थोड़ी आती है।
0: अच्छा तो मुझे बल्ले करी दसा कितने कितने इंदिया हाँ जी
1: तेरा।
0: अच्छा क्या बात है। चलिए ठीक है जी, ता तुसु जरूर काना री बांसुरी गीत होना तुसु है ना, जरूर होना ले तुसु
1: हिंदी गप्पा हुंडी हूँ।
0: अच्छा हिंदी गप्पा हुंडे तुसे
1: हिंदी अपनी गप्पा।
0: क्या बात है क्या बात है, दिल खुश है मुझको मेरा, पूरे दिन ये थकावट हटेगी।
1: अच्छा लगता होनी करी।
0: अच्छा पूरे दिन ये थकावट चलेगी मेरी तुंदी गल्ला होने करी। थैंक यू सो मच जी। और गद्दी बालना अगली बार तुसु कॉल करनी ना गद्दी गनाना ठीक है पूरा पूरा।
1: हाँ ठीक है जी।
0: ठीक है जी, कोशिश करनी तुसु ना जी।
1: सीख ले ली।
0: ठीक है जी। नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: श्रोतम बहुत ही अच्छा लगता जो है इंद मतलब इंद जो बच्चे हैं सो इतने प्यारा बलने भी कोशिश कर दें और अपनी बोली होगी जुड़ने की कोशिश कर दें। और हम अपने आप जो वाकई में कभी कभी बड़ा सौभाग्यशाली मनता कि इस स्थान पर बिखरुआ और अपने मनु जो कि सो अपनी बोली थो टच रखने में क्या सो रोज़ प्रयास करता है, हर रोज़ प्रयास करता है ना। चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ते हैं श्रोतों और फरमाइशा रहा दौर के सो बनने बुने चिंता फरमाइशा लगातार पूरी बुने चिंती।

0: कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा गैन सो चल रही है। चलिए चलते हैं श्रोताओ, और कार्यक्रम मंच इन श्रोता गण चो किया सो जोड़ दें तू सोगे। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। खरे जान। अच्छा जी, कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे हैं। हेलो। हाँ माफ़ करे जी, कॉल यारा डिसकनेक्ट हो चुकी। हाँ दिवाली और कोई श्रोता जुड़ दें तो ज़रूर तुस हो गया है कनेक्ट करे ले। तो सब बन रहे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया, और इन द अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हैं। पूछ दें कौन बोल रहे हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थम बोल रहे हैं।
1: मैं साक्षी बोल रही हूं, खनियार कटनी से।
0: अच्छा साक्षी जी, और नोयता जी। साक्षी जी
1: नोयता जी रानी है सारी।
0: अच्छा का स्कूल है पढ़ दिन कौन दिन क्लास में पढ़ दिन।
1: नाइन्थ पर पढ़ देती थी, छठी थी।
0: अच्छा अच्छा साक्षी जी कौन दिन है गीत होना तुसु।
1: मुरारी माता का भजन कह रिया।
0: मुरारी माता का भजन। चलिए ठीक है जी, जरूर होने लगे है ना जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सब भी ट्यून कर रो, और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गए सो तो हूँ कर दे हिन। आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न दे हिन। माँ मराली माता रा भजन की ऐसा होने रे फरमाइश आया, ये फरमाइश जो है ज़रूर पूरा कर दे हिन। और लेकिन चल दे तू सब भी जो इस भजनारी किनारी बने रहे, तो सब सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रहे।

चलिए जी धीरे धीरे फरमाइश रहा दौर पूरा करना हमेंटा सुले नौ बची ना अमा गुणे आली वा नागे सो ले लंदन शो

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और आखिरी फरमाइश के आसवासू ले रहे गए हाक नन्नी थी इंदी श्रोता के आसवासू कॉल करे थे और काना रे मुरली इस गीता जो तिन्या होना थो ता अब आऊँ सचिन कपूर तो सौ इजाज़त भी ले लेनो हाँ अज आऊँ अपनी तरफ थो अपनी रेडी गुंजन रे टीम रे तरफ थो जितने भी टीका चतैड़ रहे निवासीहीन योल रहे निवासीहीन सलेड़ गोदाम रहे निवासीहीन पंचायत चतैड़ रहे निवासीहीन तिन्या सब भी जो इनकी औरतों बहुत बहुत शुभकामनाएं कजो कि आज़ादी थो बात तो है पहली बार के असो अपनी पंचायत वास्ते कि असो वोट पाओ बुना हाँ और पहली बारे दृश्य के असो हेरू बुना कोई 80 साल रहन कोई 85 रहन कोई 60 रह कोई 30 रहन है ना तो पहली बार अपने ग्राम वास्ते अपने विकास वास्ते तो सब भी कि असो वोट पाओ बुना हाँ और जितनी देर तो है लाइन में संघर्ष करो हाँ इन फ्यूचर जो भी प्रतिनिधि चुनी करी इंदा हा जो भी जस्यू भी ग्राम सपोर्ट करता हा और जो चुनी करी इंदा तुंदा पूरा हक है कि तिन्या थो कजो कि ये जनता रे प्रतिनिधि हिन ना अस्त सब भी है रे कि सब भी है गया सो इंदे गंदे हाथ जोड़े हिन सब भी है गया सो ख्याल रखने बल्लू बुना तू सब भी हो है ना लेकिन अगले 5 साल गया सो ख्याल तू सु बाखूबी रखना हा और काम के सब बाखूबी लेना कजो कि ये जनता रे प्रतिनिधि हिन और जनता ही चुने करे गया सो प्रधान उपप्रधान BDC और वार्ड मेंबर किया सो बना हुआ है ना पंच बनाए ने ता देवतुल्य जनता चतैड़ पंचायत रे तीनों मेरा संदेश आ बरहाल बाकी आऊँ सचिन कपूर ले लेनु तुसु थो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ।

साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ,

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम शुरू हो गया है गुड इवनिंग धर्मशाला। और इस समय कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आपसे लेकर के रात्रि 8 बजे तक रहूंगी आप सभी के साथ। सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारी संध्याकालीन सभा होती है अब शुरू। हमारे उन सभी श्रोताओं को जो कि किसी न किसी वजह से खास अपना दिन आज का मना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम पहुंच गए हैं 28 मई में, सुबह से तो पहुंचे हुए हैं, अब तो शाम हो गई है और ये दिन भी ऐसे ही गुरुप होने वाला है। उसके बाद फिर आएगा एक नया दिन, फिर एक और दिन, फिर एक और दिन, और उसके बाद ये मई का महीना खत्म। तो समय जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। श्रोताओं, आप बोलेंगे ये कौन सी नई बात है, हमें पता है ना ये चीज़, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है जो हम यहाँ बताने आ गए। बिल्कुल नहीं, ये नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि हम समय के गुलाम हैं, ना कि समय हमारा। तो मौसम लेते हैं हम कुछ देर के बाद, फिलहाल आपको सुनवा देती हूँ आज का विचार। तो इस संध्याकालीन सभा का हमारा विचार ये है कि अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो, और अच्छा है तो किसी की मदद करो। अब आप कितना मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस विचार से सहमत होते हैं, ये तो आप जाने, लेकिन हाँ ये बात सही तो है ना। अक्सर क्या होता है कि जब वक्त हमारा ऐसे इधर उधर होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग दिल हार करके बैठ जाते हैं कि अब तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, जबकि हम भूल जाते हैं कि यही हमारा गोल्डन पीरियड है, इसी में हमको साबित करना है कि बिल्कुल सब कुछ होता है, बस एक कदम की देर है, कदम उठाइए तो सही, नहीं उठाएंगे तो गिरेंगे कैसे, और गिरेंगे नहीं तो फिर वापस उठ करके चलेंगे कैसे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं इसका एग्जाम्पल। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ तभी नहीं चलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे क्रॉल करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा खड़ा होना शुरू होता है, फिर पहला स्टेप उठाता है, और माता पिता को बड़ी खुशी होती है जब वो गिरता है, तो कि गिरता है तो तालियां बजाई जाती हैं उसके लिए कि वाह चलना तो शुरू हुआ कम से कम। और गिरते हैं जब बच्चे तो रोते हैं, तो उस समय जब सामने से माता पिता ताली बजाते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ भाई, हम तो गिर गए और हम रो रहे हैं और मम्मी पापा जो हैं हमें तो उठा ही नहीं रहे। अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उनके गिरने पर फटाफट उन्हें पुचकारते हैं, उठा लेते हैं, तो वो भी गलत है। उन्हें गिरने देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करो कि ठीक है तुम चलने लग गए भाई। और अब आज का समय तो ये हो गया है कि पेरेंटिंग भी लोग सीखने लग पड़े हैं, उसकी क्लासेस लगाने लग पड़े हैं, तो अगर ऐसा करते हैं लोग तो फिर आगे चल करके जब वो बड़े होंगे, बच्चे उनके बड़े होंगे, तो उनको क्या सिखाएंगे। ये तो एक्सपीरियंस की बात होती है, जैसे आपके माता पिता ने आप लोगों के साथ किया, वैसे ही आप अपने बच्चों के साथ आगे करेंगे, बशर्त ये है कि आपने भी अपने माता पिता के साथ अच्छा ही किया हो और उनकी भी भावनाएं समझी हों। खैर, बातें करने के लिए हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं, अभी मुझे लगता है एक गीत की ओर बढ़ लेना चाहिए हमको। मौसम के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी इसी गीत के बाद।
भाई घोरी के हाथ में क्या है, जानना चाहते हैं आप? मेला फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

से ही गोरी से संबंधित गीत आज कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं। किस लिए? वो जरूर कार्यक्रम में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा।

गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला और ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। ये जो गीत आपने सुना मेरा फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। मेरे साथ मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, और मैंने कहा था कि गीत के बाद मौसम का हालचाल आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे आज जो मौसम में बताया गया था आपको कि तूफान चलेगा, बहुत कुछ होने वाला है, थोड़ा सा चला था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अभी 12 बजे तक देखते हैं क्या होता है। रात को 28 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में, खास करके हमारे स्टूडियो के बाहर। और 38 डिग्री हवा में नमी है, प्रतिशत जी छोटा, हवा में नमी है 38%, यानी ह्यूमिडिटी।

और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था कि हिमाचल के 6 ज़िलों में लू का अलर्ट, 28 से बारिश ओलावृष्टि की संभावना होगी, तो 28 को आज तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आगे देखने वाली बात है, क्योंकि नौतपा जो है वो शुरू हो चुका है और नौतपा शुरू होते ही सूरज उगलने लगता है आग। इस बात का एक्सपीरियंस आप सभी ने कर लिया होगा कि पीछे 2-3 दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसको उमस भरी गर्मी कहते हैं, वैसा कुछ हाल था। उत्तर भारत में तो भीषण गर्मी का सितम जारी है और दिन के समय अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो ऐसा लगता है कि किसी ने विशाल भट्टी चला दी हो। और नौतपा शब्द एक बार फिर से सुनाई देने लगा। हर साल जैसे ही मई के आखिर और जून की शुरुआत के बीच उत्तरी और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ता है, ये शब्द फिर से चर्चा में आ जाता है और इसे आमतौर पर मानसून आने से पहले गर्मियों का सबसे कठिन दौर माना जाता है। और इस साल इसका समय खास तौर पर चिंताजनक ये है, क्योंकि नौतपा एक शक्तिशाली सुपर एल नीनो चरण के बचे हुए प्रभावों के साथ मेल खाता है, जिसने वैश्विक तापमान को काफी बढ़ा दिया है। तो श्रोताओं, आप इस गर्मी में अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का खास करके।

अब जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वैसे आज का विचार तो हमने ले लिया है, लेकिन ये है एक ऐसी बात जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान से भी पहले आते हैं हमारे माता पिता। जी हाँ श्रोताओं, हमारे माता पिता छत जैसे होते हैं, जैसे छत हमें धूप आंधी तूफान वर्षा से बचाती है, वैसे ही माता पिता हमें दुखों कष्टों क्लेशों से बचा करके रखते हैं। वो हमेशा हमारे वफादार हमारे डॉक्टर भी होते हैं। वो खुद गीले पर सोते हैं, हमें सूखे पर सुलाते हैं। और अगर और जितनी भी बातें मैं अगर अभी से लेकर शुरू कर दूं और रात्रि 8 बजे तक इनके बारे में करती रहूं तो शायद कम पड़ेगा समय। ये 2 घंटे तो क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी उम्र भी इनके लिए अगर हम लगा देंगे ना तो हमारी उम्र भी कम ही पड़ने वाली है। परंतु फिर भी सोच तो अपनी अपनी है ना। कई लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, माता पिता हैं, उनका फ़र्ज़ है ये करना, उन्होंने कौन सा नया काम कर दिया हमारे लिए। क्योंकि अभी ही कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट, वो आते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि कोई सोशल मीडिया पे अगर कहीं कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ आप देख रहे हो तो अचानक से आपके सामने कोई छोटी सी मूवी आ जाती है, तो वैसा कुछ मैं देख रही थी। तो उसमें मैंने एक पाया कि एक माँ है जो 3 बच्चों को अकेले पाल रही है, किसी वजह से उनके जो हस्बैंड है वो साथ नहीं रहते, लेकिन बच्चों को कोई कदर ही नहीं है कि उनकी माता कितना संघर्ष कर रही है। उतने से लेकर के छोटे से लेकर के बड़ा कर दिया उस माँ ने उन बच्चों को, लेकिन उनके लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपका तो फ़र्ज था, आपने किया, और अब जब हम बड़े होंगे तो हम भी करेंगे। तो उनका कहना मतलब ये है कि इसी तरह से दुनिया चलती है और हम भी चला लेंगे, कोई बात नहीं। तो किसी के बलिदान को, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, उसे उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम भी यही कहते हैं कि ठीक है, फ़र्ज़ तो होते हैं, कुछ फ़र्ज़ उन्होंने निभाने होते हैं अपने। कई माता पिता हैं जो किसी कारणवश कई सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके मन में ऐसा नहीं होता कि वो ना करें या कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी वजह से, चाहे पैसे की ही कमी क्यों ना हो, कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को दूसरे लोगों से कमतर मिले।

श्रोता, हुस्न जवानी तो फिर भी शायद मतलब इसका रिग्रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा इंसान को जो कि माता पिता के खोने का रिग्रेट होता है। तो इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या वाकई में आज की जनरेशन जो सोचती है वो सही है, या हमारे जो माता पिता, जब हम अपने समय में थे तो माता पिता के आगे हम बोल भी नहीं पाते थे, हमें बहुत कुछ तो पता भी नहीं होता था, हम बस उनके पास ऐसे हम अपने आप को फील करते थे जैसे हम बहुत महफूज हैं।

इस गीत का मुख्य महत्व जीवन की नश्वरता और उन अनमोल चीज़ों को याद दिलाना है जो इंसान को जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलती हैं और खो जाने के बाद दोबारा कभी भी वापस नहीं आती हैं।

दुनिया में हर रिश्ता बदला या दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का साया और उनका निस्वार्थ प्यार जीवन में केवल एक ही बार मिलता है। शुभ हरभजन मान की आवाज में सुना आपने ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे आज के खास दिन के बारे में। जानते हैं आप आज क्या क्या है? जी, जब हमने ये कह दिया कि क्या क्या है, तो आप समझ गए कि आज बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। तो एक तरफ तो हमारे देश में मनाया जा रहा है बकरीद, यानी ईद उल अजहा। वर्ष 2026 में भारत के अधिकांश हिस्सों में 28 मई को बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चांद दिखने के आधार पर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी आधिकारिक छुट्टी जो है वो 27 मई से बदल करके 28 मई तय कर दी।

और दूसरी तरफ हम कुछ जयंतियां भी मना रहे हैं, जैसे कि एनडीआर जयंती, वीर सावरकर जयंती और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज हैं। उसके बारे में बात आगे करूंगी।

फिलहाल हम बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के बारे में। इस्लामी वर्ष का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा अपने साथ अनगिनत रहमतें, बरकतें और आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है, और इन्हीं दिनों में दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचते हैं। और इसी महीने मुस्लिम समाज ईद उल अज़हा यानी बकरीद मनाता है और हज़रत इब्राहिम की याद में कुर्बानी देता है।

वैसे अगर हम इसके पीछे की घटना से कहें तो घटना कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस दिन को हम अगर हम रूहानी तरीके से समझें तो अपने पालनहार की इच्छा के सामने अपनी इच्छाओं, घमंड, ईर्ष्या और नफरत को त्याग देना ही असली सफलता है। ईद उल अज़हा और हज के संदेश को केवल धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक भलाई, मानवता और भाईचारे से जोड़ना चाहिए। ये पर्व त्याग, धैर्य, माता पिता की आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है।

उस्ताद अहमद हुसैन और साथियों की आवाज़ों में आपने वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

जी श्रोताओं, तो इस छोटे से अंतराल के बाद हाजिर हो गए हैं फिर से करने आपसे बातचीत। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रोताओं जो कि हमारे बीच में हो या ना हो, लेकिन ना हो करके भी वो हमारे बीच में ही रहते हैं और हमेशा के लिए। कोई कोई अपनी आवाज़ की वजह से, कोई अपने कार्यों की वजह से, और कोई कोई इसलिए कि हम आज़ाद हैं। जी हाँ, वीर सावरकर की बात आज हम करेंगे। आज उनकी जयंती है, आज उनकी जन्म जयंती है। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और राष्ट्रप्रेम की भावना दिखाई देने लगी थी। युवावस्था में उन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की जो आगे चलकर के अभिनव भारत के रूप में विकसित हुआ और इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करवाना था।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। मुख्य गायक हैं सोनू निगम और उनके साथ साथ दिया है बहुत से साथियों ने।

जी श्रोताओं, तो विनय दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें हिंदुत्व की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने के लिए जाना जाता है। और उनकी विरासत तो आज भी ऐतिहासिक बहस का विषय है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष करने हेतु 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की।

और लंदन में कानून की पढ़ाई की और फिर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1911 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया और अंडमान के निकोबार द्वीप समूह में स्थित कुख्यात सेलुलर जेल कालापानी में 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। क्रूर परिस्थितियों में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। हालांकि उनसे दया याचिका दायर करने की शर्त रखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होने का वादा किया था।

वर्ष 1907 में उन्होंने लंदन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई और इसी दौरान अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का स्वातंत्र्य समर लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया और यही पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए इस प्रेरणा स्रोत बन गई, जब कि ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। और तभी उसके बाद उन्हें उस सेलुलर जेल में भेजा गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं, कठोर श्रम करवाया गया, परंतु उनका मनोबल तो कभी भी नहीं टूटा। उन्होंने तो जेल की दीवारों पर ही कविताएं लिख दी, उन्हें कंठस्थ कर लिया और ये उनकी अदम्य मानसिक शक्ति और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। चलिए यही गीत सुन लेते हैं हम।

श्रोताओं, बात हो रही है आज वीर सावरकर जी की, जिनकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। उन्होंने छुआछूत, जाति भेद और सामाजिक असमानता का विरोध किया तथा सामाजिक समरसता पर बल दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता तभी मजबूत हो सकती है जब समाज में समानता और भाईचारे की भावना हो। वो हिंदुत्व के सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व में भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। तथा अपने विचारों से समाज को दिशा देते रहे।

पता है 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग करके आत्मार्पण के माध्यम से देह को त्याग दिया।

वजह से आज हम आज़ाद हैं। चाहे जो मर्जी कह लें हम, लेकिन हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

टू फिल्म का ये गीत है सोनू निगम की आवाज़ में, और साथ में साथियों ने भी साथ दिया है। और बात हम कर रहे हैं वीर सावरकर जी की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम उन महान क्रांतिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने विचारों, लेखनी और संघर्ष के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की नई चेतना जागृत की।

प्रश्न होता है ना इस गीत को सुन करके, आप लोगों के रोंगटे तो खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम आपस में लड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब भूल जाते हैं हम कि कभी हम गुलाम भी थे और कितनी मुश्किलों से हमने आज़ादी पाई, और उस आज़ादी का हम कैसा मिसयूज़ करते हैं।

0: सिद्धारामैया ने राज्य सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारामैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा

साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग, साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

क्या बात है दोस्तों, इस वक्त तो पहाड़ों की रानी धर्मशाला में फिजाएं ही कुछ अलग सुर बिखेर रही हैं। और आप हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो हमारे परम पावन दलाई लामा जी के 90 वर्ष के पड़ाव पर कदम रखने की खुशी में धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 3 दिनों का जो तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव शुरू हो चुका है। पिछले 70 सालों से भी ज़्यादा वक्त से दलाई लामा जी ने भारत को, हमारी इस पावन मिट्टी को अपना घर माना है। तो ये उत्सव सिर्फ तिब्बती संस्कृति का नहीं, ये प्रतीक है उस बेमिसाल हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी का जिसने दुनिया की एक खूबसूरत संस्कृति को अपने सीने से लगा लिया। और सच कहूँ दोस्तों, तो यही तो है मेरे भारत की खूबसूरती। हमारी सरहदें, हमारी भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन हमारा दिल तो एक ही है। उत्तर के इन बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक पूरा भारत एक ही धागे में पिरोया हुआ है। जैसे कि कश्मीर की ठंडक को कन्याकुमारी की धूप गले लगा लेती है, वैसे ही भारत हर संस्कृति को अपना बना लेता है। चलिए फिर उत्तर और दक्षिण के इसी खूबसूरत मिलन को सेलिब्रेट करते हैं और आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये धमाकेदार गीत। फिल्म का नाम लग गया ना पता आपको? जी, चेन्नई एक्सप्रेस।

अब क्योंकि दलाई लामा और तिब्बती संस्कृति भारत के उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये गाना उत्तर और दक्षिण के भौगोलिक और सांस्कृतिक मिलाप की बात करता है।

तो हमारी ओर से भी दलाई लामा जी को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस फेस्टिवल का पहला दिन जो है आज का, वो तो अब हो चुका है। अब कल और परसों आप जा सकते हैं देखने के लिए, जाइएगा जरूर।

तो श्रोताओ, अच्छा लगा आपको गीत सुन करके? मजा आया? कुछ रिलेट कर पाए आप? जी हाँ, जब दो संस्कृतियों का मेल होता है ना आपस में, तो कुछ ऐसी ही भावना मन में जगती है। तो हम फिर से आपको कह रहे हैं, दो दिन अभी और हैं आपके पास, कल और परसों का, तो जरूर जाइएगा, पुलिस ग्राउंड जाइएगा और देखिएगा ये जो अपना फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या रख रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में कि ओपन में कोई फेस्टिवल हो रहा है जिसकी कोई एंट्री टिकट नहीं है, कोई फीस नहीं है, आप जा सकते हैं, आराम से अपने कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ खुद भी जाइए और अपने बच्चों को भी लेकर के जाइए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। तो ये है आपका अपना मन पसंदीदा शो। दोस्तों, आज तारीख है 28 मई। बार बार मुझे आपको बताना पड़ रहा है किसी वजह से। कैलेंडर पर तो महज एक तारीख है, लेकिन आज का दिन हमारे समाज के दो सबसे बड़े और सबसे जरूरी मुद्दों पर बात करने का दिन है। अगर मैं लीपा पोती की भाषा में कहूँ तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, और अगर मैं सटीक बात करूँ तो आज है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। और जी हाँ, यही एक अजीब दास्तां है हमारे समाज की कि कोई भी बात जब करनी होती है, कोई ऐसी वैसी बात अपने बच्चों को समझानी होती है, चाहे वो यौन क्रियाओं से संबंधित हो या फिर इस तरह के मासिक धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें हों, तो हम सीधे सीधे ना बोल करके उस पर लीपापोती कर देते हैं और फिर और अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को समझाने लग जाते हैं, कि ये ऐसे विषय होते हैं कि इन पर भी खुलकर के बात होनी चाहिए। जब आप खुलकर के घर में सब कुछ बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े खुलकर के कर लेते हैं बच्चों के सामने भाई, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो फिर इन बातों को क्यों नहीं उन्हें खुलकर के समझाते हैं।

तो दूसरा है विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे। और दोनों ही मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं श्रोताओं। तो अगले जो भी कुछ समय हमारे पास बचा हुआ है ना, हम और आप, जी हाँ बिल्कुल, आपको भी शामिल कर रही हूँ बीच में क्योंकि आप सुन रहे हैं ना मेरे इस दोस्त माइक के परे। जी हाँ, ये मेरा दोस्त है जो कि मेरी सारी बातें आप तक पहुँचा रहा है और बड़ा ही प्यारा दोस्त है। तो इस बचे हुए समय में हम दोनों यानी आप और हम मिल करके इन दोनों विषयों पर जमी हुई जो चुप्पी है ना, उसको आज तोड़ेंगे, कुछ बेहद ज़रूरी बातें करेंगे। और हाँ, आपके पसंदीदा गानों का सफ़र भी तो जारी रहने वाला है, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अब होंगी बातें दिल की। वैसे दिल से ही बातें करते हैं हम आपके साथ हमेशा ही। तो पैडमैन फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं आप? जी, हम तो सुनवाना चाहते हैं आपको।

0: आज से सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया।
1: भाई अगर मालपुए भी खाने हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भी तो रखना होगा ना आपको अपनी पत्नी का। ये गाना मुख्य किरदार द्वारा अपनी पत्नी की मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने को बहुत ही खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ दर्शाता है।

जी श्रोताओं, ये जो सब कुछ मेरा है वो तेरा हो गया और तेरा जो है वो मेरा हो गया, इसके पीछे के मर्म को भी समझिए। जब कोई किसी तकलीफ में होता है और साथी उस पर ध्यान देता है तो कितनी अच्छी बात होती है ना। और इस फिल्म में भी तो कुछ ऐसा ही रहा। अगर आपने देखी हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी होगी ना तो ज़रूर ज़रूर फिर से कह रही हूँ, इस फिल्म के बारे में भी देखिएगा ज़रूर। तो पैडमैन फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। गुड इवनिंग, धर्मशाला कार्यक्रम है और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, ये जो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है, ये आज ही का जो दिन है वो क्यों चुना गया आपको पता है? इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। कभी भी किसी भी दिन को चुन लिया जाता, ये तो कोई ऐसा खास विषय नहीं था कि आज ही के दिन को चुनना था, पर आज आप ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, क्योंकि ये साल का पांचवा महीना है। मई मई होता है साल का पांचवा महीना, ये तो आपको पता है ना। पर महिलाओं के उन 5 दिनों को भी दर्शाता है। जी हाँ, सिग्निफिकेंस है ये। इस वजह से इसी तारीख को चुना गया कि 28 तारीख उनके 28 दिनों के नेचुरल साइकिल को दिखाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में भी हमारे ग्रामीण इलाकों में, या फिर यूं कहूं कि कई बार तो शहरी इलाकों में भी, शहरों में भी पीरियड्स शब्द को एक हौवा माना जाता है। इस पर हमेशा ही फुसफुसा की बात की जाती है। अरे भाई, ये कोई बीमारी या शर्म की बात नहीं है, ये तो जीवन की शुरुआत है, सेहत का मामला है। और कहते हैं ना कि अगर किसी को अच्छे से खुल करके पीरियड्स नहीं आते हैं तो इस पर भी खुल करके बताना चाहिए, बच्चों को बात करनी चाहिए, ना कि इसे छुपा छुपा के रखना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि छुपाया जाए, ये सेहत से जुड़ी हुई समस्या होती है, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए, खास करके माता को चाहिए कि वो अपनी बेटी से इस पर खुल करके बात करे। और घर में अगर माँ नहीं है तो दादी, नानी, बहन, मौसी, कोई भी हो सकता है। और अगर कोई भी नहीं है, जैसे आजकल संयुक्त परिवार नहीं होते हैं, एकल परिवार होते हैं, तो पिता भी इसका इस बारे में इनिशिएटिव ले सकता है। और सरकार भी तो मात्र 1 रुपये में सुविधा पैड्स जन औषधि केंद्रों पर दे रही है, तो फिर आज ही अपनी घर की महिलाओं से, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, शर्म को बदलिए समझदारी में।

और कई बार हम क्या करते हैं कि बात करने की बजाय ये कहना शुरू कर देते हैं बच्चों को कि तुम्हारा ऐसा समय है तो तुम ऐसा करो, आराम से बैठ जाओ, इधर उधर मत जाओ, डांस मत करो, ज़्यादा उछल कूद मत करो। भाई क्यों क्यों रोकना है किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को?

जी हाँ, क्या आप भी अपनी लड़कियों को आज़ाद करेंगे? भाई उस वे से नहीं बोल रही हूँ मैं, आप समझ रहे हैं हम पहले क्या बात कर रहे थे। कुछ खास समय पर हम अपनी लड़कियों पर बंधन लगाते हैं, उसको खोल दीजिए। श्रोताओं, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस तो हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के महत्व को उजागर करना, महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और महामारी से जुड़े सभी सामाजिक कलंक और वजनाओं को दूर करना। अब मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता क्यों जरूरी है? हर 4 से 6 घंटे में सैनिटरी पैड्स, टेम्पोन या फिर मेंस्ट्रुअल कप जो होता है उसको बदलना चाहिए। ऐसा न करने पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे कि गंभीर संक्रमण इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये बातें आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाइए। इस्तेमाल किए गए उत्पादों को कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रूप से कागज़ में लपेट कर डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों 10 से 19 वर्ष के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS चलाई जा रही है, और इसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन्स की उपलब्धता को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और मौलिक अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर से करेंगे इसी विषय पर बात।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: तो छोटे अंतराल के बाद हम फिर से आ गए हैं आपसे करने बातचीत। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब फिर से बात करेंगे हम अपने आज के विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर, और इसी विषय पर हमारे फिल्म में इंडस्ट्री में भी एक फिल्म बनी है बैडमैन। अलग अलग विषयों पर फिल्में बनती ही रहती हैं, शौचालय पर भी फिल्म बनी हुई है, और ये जो फिल्म बैडमैन है इसमें एक गाना है द बैडमैन सॉन्ग, जिसे गाया है मीका सिंह ने। कौसर मुनीर ने इसे लिखा है। सिर्फ एक डांस नंबर या पैपी सॉन्ग नहीं है, है तो बहुत छोटा सा, लेकिन अगर आप समझेंगे बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे। अभी थोड़ा सा हम इस गीत के बारे में आपको बता देते हैं और फिर इससे प्ले करेंगे, तब आपको शायद ये सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आमतौर पर फिल्मों में सुपर हीरो का मतलब होता है कि जो हवा में उड़ता है, या फिर गाड़ियों को पलटता है, या फिर विलेन की हड्डियां तोड़ता है, यानी कि अच्छी तरह से उनकी धुनाई करता है। लेकिन ये गाना कहता है थाए थाए ना गोली मारे, धाए धाए ना एंट्री मारे, पर सुपर हीरो है ये पगला। ये गाना समाज को बताता है कि असली सुपर हीरो वो नहीं है जिसके पास जादुई ताकतें हैं, बल्कि आम इंसान है जो कि महिलाओं की सेहत और उनसे जुड़ी बुनियादी समस्याएं, ज़रूरतें, जैसे कि मासिक धर्म स्वच्छता के लिए समाज से लड़ जाता है। और जब देश में कोई लीक से हटकर काम करता है तो लोग उसे पागल भी कहते हैं। ओ ये है मैड मैड मैड पैडमैन। पर ये गाना इस कड़वे सच को उजागर करता है कि जब अरुणाचलम मुरुगुथानम जिन पर ये फिल्म बनी है एक्चुअली में उन्होंने सैनिटरी पैड्स बनाने की शुरुआत की तो समाज और यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी उन्हें पागल ही समझा था। तो ये गीत उस पागलपन को सलाम करता है जो समाज में बदलाव लाता है, संदेश देता है कि महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए किसी विदेशी तकनीक या बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है बल्कि एक सच्चा और जिद्दी भारतीय दिल काफी है। और उस पर मीका सिंह की आवाज क्या कहने, जिस विषय को अक्सर बहुत ही दुखद गंभीर या फिर रोते रोते हुए दिखाया जाता है वो है मासिक धर्म, लेकिन संगीतकार अमित त्रिवेदी और गायक मीका सिंह ने इस गाने को एक उत्सव के रूप में बना दिया यानी सेलिब्रेशन बना दिया। मीका सिंह की हाई एनर्जी आवाज इस झिझक वाले मुद्दे को एक गर्व की बात में बदल देती है जिससे लोग इस विषय पर शर्माने की बजाय झूमने लग जाते हैं। तो चलिए आप भी सुनिए और आप भी झूमिए। बस दो मिनट ही तो झूमना है।
6: स्टडी आईआईटी बट आईआईटी स्टडी मी।
7: हो

0: साफ शर्ट को गंदा क्यों कर रहा है?
1: लोगों को बताना चाहिए कि सारी मशीनें मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। एसी में बैठ के टांगे नहीं लाता।
0: तू मार्केटिंग गुंडा है साले, मैनेजमेंट स्कूल में सिखाना चाहिए।
2: हाँ, हरकत

0: यहाँ है ये जिगरी।
1: दाग नहीं लगाया? लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम एसी के रूम में बैठ के अपनी टांग नहीं हिलाते हो?
2: भारत की गरीबी दिखा दिखा के बहुत डॉग मिलियनेयर हो गए हैं। मैं नए भारत की नई तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।

0: चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं हम वर्ड हंगर डे के बारे में। कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं हमारे पास। दुनिया में जितना खाना तैयार होता है उसका एक तिहाई हिस्सा हम बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर ये बर्बादी रुक जाए तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। शादियों और पार्टियों में प्लेट में खाना छोड़ने से बस एक बार उस बच्चे के बारे में सोचिएगा जो आज रात सिर्फ पानी पीकर सो गया।
1: इधर जरा सा देख लो, है एतबार तुम पे, मेरी नजर से देख लो, है हमको प्यार तुमसे।
0: छोटा हूँ, भोजन का सम्मान कीजिए।

श्रोताओं, हमारे केंद्र से कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं इस विषय पर भी आप बता सकते हैं 7018117091 पर मैसेज कर सकते हैं। और लाइव बात तो आप इसी नंबर पर करते ही हैं। और बस अब थोड़ी देर में ही समय होने वाला है प्रादेशिक समाचारों का, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लगघाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान बंपर वोटिंग हुई और मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1279 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आज रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, सिरमौर जिले में 85%, सोलन जिला में 84%, ऊना जिला में 80%, कांगड़ा व किन्नौर जिला में 76%, लाहौल स्पीति में 69%, हमीरपुर में 75%, बिलासपुर में 79%, चंबा 78% और मंडी व शिमला जिला में 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। शिमला जिले के रोहडू विकासखंड की ब्रासली पंचायत की 110 वर्षीय सुरतु देवी, बिलासपुर जिला की कसारू पंचायत की 108 वर्षीय रूपा देवी, दकड़ी पंचायत की 107 वर्षीय मनभरू देवी, रोहडू क्षेत्र की दियुदी मायला पंचायत की 107 वर्षीय बाला देवी, बिलासपुर जिला की हरनोड़ा पंचायत की 106 वर्षीय संतराम, नूरपुर विकासखंड की पंचहड़ा पंचायत के 105 वर्षीय बाबूराम, बिलासपुर की बलसीना पंचायत की 100 वर्षीय नारायण देई और शिमला जिला की कोहलू जुब्बड़ पंचायत की 98 वर्षीय चम्मी देवी स्वयं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची। आज मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डाले। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान व सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। कुल्लू जिला की लगघाटी की बड़ई बाग पीज सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा और वाहन चालक शामिल हैं। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तीनों मृतक महिलाएं एक ही गांव बेधर की रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में अपनी हार देख कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनावों से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि उसे पहले ही अपनी हार का आभास हो गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को झूठ के सहारे जनता के वोट हासिल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर लोगों को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन अब जनता कांग्रेस की चालाकी को समझ चुकी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आज धर्मशाला में शुरू हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश है। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, भारत का एक विजडम हम लोग अभी तक उसको संभाल के रखा है। तो ये सब समझने के लिए अभी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हमारे सोच ये है कि अगर फंडिंग ज्यादा हो तो हम लोग और ज्यादा कर सकें, तो भारत के दूसरे सिटीज में कर सकें।
0: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव को भारत और तिब्बत की संस्कृति के संगम का प्रतीक बताया।
2: भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है। हम लोग यहाँ चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, एक समाज की तरह साथ रहते हैं और को एग्जिस्ट कर रहे हैं और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ईद अल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला में ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अदा की गई। चंबा में भी ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर जहां छोटे छोटे बच्चे नई पोशाकों में उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ नमाज में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लग घाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ ज्योति पठानिया, आपकी रेडियो होस्ट। और अब आपसे ले रही हूँ इजाज़त इस प्यारे से गीत के साथ। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुनिए लाड साहब फिल्म का ये गीत,
4: सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।
3: जी सवेरे वाली नहीं, मुझे अभी ही जाना है घर। परंतु आप इस गीत को एंजॉय कीजिए और मुझे दे दीजिए अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: वे मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुपकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।